0: 听众朋友们，接下来将播放另一首歌曲，这首民歌为你们接下来一下，请大家收听一下。
1: यानंतर संगीत साक्षरता अभियान नावर सादर करते हैं।

听众朋友们，接下来将播放另一首民歌，这首民歌是中拉加斯坦邦的民歌，请大家收听一下。

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, kami komentar lagu rakyat, Man Ki Baat, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर

0: भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
7: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है। नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर चार धाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने सभी फरीकी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो जारी तनाजात के दरमियान तहमुल से काम लें, कशीदगी कम करने, शहरियों की हिफाजत और तिजारत और तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि जंगों के असरात सिर्फ बराह रास्त शामिल मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि उनकी सरहदों से बहुत दूर तक दीगर ममालिक के शहरियों को भी भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी और तनाजात आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करते हैं, तरक्की की रफ्तार को सुस्त करते हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत सूरतेहाल को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के शोबों में सभी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हुकूमत की पुश्तपनाही में की जाने वाली दहशतगर्दी आलमी निजाम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। वजीर खारजा ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दहशतगर्दी की माली एयानत को बेनकाब करके उसका मौसर मुकाबला किया जाना चाहिए।
1: Has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
0: रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मजीद नशिस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशिस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने

0: कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत और हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन है। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के कुल 15 अरकान हैं, इनमें 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हैं जिन्हें वीटो का इख्तियार हासिल है। ये 5 ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। इसके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जिन्हें 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, TT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला-ओ- नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले रहेंगे। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नजर उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंक शाखों, दफातर, ATM वाली शाखों और करेंसी चेस्ट्स को आज पूरे तौर पर कामकाज करने के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोज तक जारी रहने वाली बैंक हड़ताल के दौरान महाना मुफ्त लेनदेन की हद से ज्यादा ATM लेनदेन करने पर चार्जेस को माफ करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कई अहम तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो साबरमती लोको शेड में नए तामीर करदा WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर जनाब शाह ज्यादा हॉर्स पावर वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह साबरमती रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वो स्टेशन की तामीर नौ से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर दाखिला मुल्क की रकीक कुदरती गैस LNG से चलने वाली पहली डेमो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे के लिए माहौल दोस्त इकदाम के सिलसिले में एक अहम संग मील है। जनाब शाह शैला में आचार्य पद्म सागर सूरी सौराजी महाराज की 92वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात के महकमे ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और इक्का दुक्का मकामात पर इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मुसलसल बारिश के तनाजुर में आज चारधाम यात्रा मुअत्तल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के सभी अजला में आधी तूफान, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के बाला इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम की वार्निंग के पेश नजर पूरी रियासत में आफात से निपटने का निजाम हाई अलर्ट पर है। हुक्काम हसास इलाकों, दरियाओं और नदी नालों के साथ साथ पानी जमा होने वाले मकामात की भी निगरानी कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वह खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: उधर उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। रियासत में अब तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासर तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और मुतासर अफराद को फौरी राहत और मदद फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जुमेरात से शुरू हुई शदीद बारिश रियासत के कई खित्तों में मुसलसल जारी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत कई जिलों में बारिश के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के 63 जिलों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। राहत कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मामूल से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। शदीद बारिश की वजह से दर्जा

0: हरारत में भी काफी कमी आई है और फसलों खासतौर पर गन्ना धान और सब्जियों को खासा नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: ओडिशा में गुज़िश्ता कुछ दिन से शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तुगयानी और नशेबी इलाकों में पानी भरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि सुबर्णरेखा दरिया की सतह में तेजी से इजाफा शिमाली ओडिशा में तशवीश का बाइस है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हीराकुंड बांध के 22 फाटक खोल दिए गए हैं। इनके जरिए इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। महानदी और उसके मुआविन दरियाओं के किनारे वाके नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने उड़ीसा के बाज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और हुकाम से सैलाब की सूरत हाल पर गहराई से नजर रखने की हिदायत दी है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तिसादी तरक्की को तकवियत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को असर नौ वजा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू जहानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तबिल का तयन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए सियाहत के सेक्रेटरी भुवनेश कुमार ने कहा कि सियाहत का शोबा इक्तिसादी फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने में नुमाया अहमियत का हामिल है। हमारे नामानिगार के मुताबिक स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद क्रूज सियाहत और सियाहत से वाबस्ता हुनरमंदी की तरक्की जैसे इकदाम से सियाहती मकामात को वसत हासिल हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: भारत के सियाहत के शोबे का इकतसादी तरक्की रोजगार और जरिए माश के तौर पर मुल्क की GDP में 5% का हिस्सा है। घरेलू सियाहती दौरे 2025 में 428 करोड़ से ज्यादा रहे, जबकि गैर मुल्की सियाहती दौरों की तादाद 2.5 करोड़ रही। मरकजी हुकूमत के जरिए तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत मुल्क के सियाहत के इको निज़ाम और मरबूत सियाहती तरक्की की पायदार से मुतालिक अहम इकदाम पेश करेंगे। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: तमिलनाडु में बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतें MSMEs मुल्क के बड़े MSME इको निज़ाम में से एक हैं। रियासत में एक ऐसा वाहिद पोर्टल मौजूद है जिसके जरिए कारोबारी इदारे मुख्तलिफ महकमों से जरूरी मंजूरी का अमल एक ही जगह से मुकम्मल कर सकते हैं। रियासत में MSMEs की तरक्की के लिए एक अलग वजारत महकमा भी मौजूद है, जिसका मकसद छोटे और दरमियाने कारोबार को बाख्तियार बनाना है। MSME का सेक्टर मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार GDP में तकरीबन 31% का ताउन करता है और यह ज़राअत के बाद रोजगार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। कोयम्बटूर में 80,000 से ज्यादा सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड MSMEs और उद्योग आधार यूनिट्स मौजूद हैं। तमिलनाडु में मजमूई तौर पर 7,59,847 रजिस्टर्ड बहुत छोटी सनअतें, 1,01,861 छोटी सनअतें हैं। जुआ रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक रोजा बैन अलाक्वामी 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभम गिल इस ODI सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान हैं, जबकि शाई होप वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज भारत की मर्दों और खवातीन पर मुश्तमिल तीरंदाजी की टीम अपने अपने जुमरों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
3: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने भारत खलीजी कौंसिल तजारती इजलास से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इजलास में तजारत और तवानाई में बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर जोर, वज्रा की मीटिंग में सरमायाकारी सिक्योरिटी और अवामी राबतों को मजबूत करने पर तबादला ख्याल। रोजनामा प्रताप ने BJP के कौमी सदर नितिन नवीन के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी बनाई है, नितिन नवीन दो रोजा दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे।

0: और आला सतही तंजीमी जायजा मीटिंग करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर ईरानी सदर के अक़वामे मुत्तहिदा इजलास में शिरकत की खबर को शह सुर्खी बनाया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई और तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नज़र आज चारधाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य की मील के वो पत्थर रहे हैं जहाँ से कविता दिशा बदलती है, राहें बदलती है। आज कविता का एक बड़ा वर्ग गज़ल की तरफ लगभग झुक गया है। बेहतरीन गज़लों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और एक ज़मीन भी तैयार की है। साहित्यिकी के इस अंक में लीजिए सुनिए हिंदी गज़ल नई ज़मीन विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं जाने माने लेखक और समालोचक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ शायर और समीक्षक श्री दीक्षित दनकौरी, वरिष्ठ कवि और गज़लकार श्री अनिल वर्मा मीत। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और गज़लकार श्री राजेंद्र निगम राज।
2: आज दुष्यंत कुमार जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम सभी मालूम है कि सितंबर माह में ही उनका जन्म हुआ था, इसीलिए सितंबर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो ज़मीन की बात चलती है कि उर्दू में गज़ल की ज़मीन, जैसे गालिब की ज़मीन या किसी शायर की ज़मीन हम बोलते हैं तो बहर काफिया रदीफ़ का वर्णन किया जाता है, तो हिंदी में गज़ल की ज़मीन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: दरअसल एक ही शब्द के अनेक संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थों में इस्तेमाल होते हैं। जो ज़मीन को अगर एक पारिभाषिक शब्द के रूप में लें, उर्दू अरूज़ यानी पिंगल शास्त्र की इस्तलाह बोलते हैं उसे फारसी में, हम हिंदी में उसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अगर हम पिंगल की पारिभाषिक शब्दावली में यानी अरूज़ की इस्तलाह के तौर पर ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि एक शायर की क्या हर रचनाकार की एक हर गज़ल की ज़मीन होती है, जाहिर है कि ज़मीन काफिया और अदीब से ज़मीन की पहचान होती है और एक ही ज़मीन में बहुत से शायर शेर कहते हैं और मीर की ज़मीन में हज़ारों ने शेर कहे होंगे, दीक्षित दनकौरी की ज़मीन में बाद के कई लोगों ने शेर कहे होंगे, तो पारिभाषिक अर्थ में ज़मीन के माने ये हैं। लेकिन हम रचनात्मक अर्थ में जब ज़मीन का अर्थ लेते हैं तो उस ज़मीन से आशय जो है वो उसकी अंतर्वस्तु, उसकी वैचारिकता, उसकी सोच, और इसका अर्थ ये नहीं है कि अकेले अंतर वस्तु या वैचारिकता, बल्कि साथ में उसकी जो अभिव्यक्ति है यानी जबान और बयान, ये भी उसमें शामिल होते हैं। तो हम जब जमीन कहते हैं तो हमारी मुराद यहाँ सोच की जमीन से है। जो विषय आपने रखा है वो विषय इस के संदर्भ में उस जमीन का अर्थ नहीं देता, अरूज वाली जमीन का, वो ये अर्थ देता है कि गजल जो है वो किस तरह से विकसित होते हुए, हम दुष्यंत कुमार को आरंभ बिंदु नहीं मान सकते क्योंकि दुष्यंत कुमार भी स्वयं को गजल का आरंभ बिंदु नहीं मानते थे, उन्हें भी विरासत में चीजें मिली थी, उन्होंने एक नया संस्कार उसे दिया। तो मेरा अपना जो पक्ष है वो पक्ष ये है कि नई जमीन की जो आप बात करते हैं, और मेरी ये बहुत दृढ़ मान्यता है कि नई जमीन पुरानी जमीन की वाबस्तगी में ही विकसित होती है।
2: जी,
3: अगर आप ये सोचना चाहें कि आप हिंदी गजल में या गजल ही नहीं किसी भी काव्य रूप में कहते हैं कि भाई उन्होंने नई जमीन तोड़ दी, भाई नई जमीन पुरानी जमीन से विच्छिन्न होकर नहीं आप ईजाद कर सकते, जो अपनी परंपरा में

0: जितना गहरे धंसा होगा वो उतना ही नया लिखेगा और कहेगा।
1: जी बिल्कुल,
0: और जबकि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि भाई रवायत से हटो, रवायत से हटो, ये बहुत गलत सोच है। रवायत से हटने का, रवायत ही तो से प्राण वायु आप ले रहे हैं वहां से, दुष्यंत को, बाल स्वरूप राही को, बलबीर सिंह रंग को, उस दौर के जो और लोग हैं, या निराला की बेला की गजलों को 1946 की, या शमशेर बहादुर सिंह को, त्रिलोचन को, हम इनसे अपनी सोच का रिश्ता अगर तोड़ लेंगे तो नई जमीन की इजाद अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंतिम बात कि मैं निराशावादी इस मामले में नहीं हूँ। नई जमीन मुझे नजर आ रही है, सवालों का सामना लोग कर रहे हैं, यही वो नई जमीन है। लेकिन ये जमीन जितनी ताकत दुष्यंत कुमार और अपने अन्य वरिष्ठ जो गजल कवियों से ग्रहण करेगी, उतनी ही ज्यादा बलवती होगी और ताकतवर होगी।
1: बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं माननीय दीक्षित अंकोरे जी, शायर की दुनिया के मशहूर नाम, आपसे पूछना चाहूंगा कि दुष्यंत के आने के बाद गजलों की दुनिया में क्या बदलाव आया है?
2: देखिए, शर्मा जी ने जो बात शुरू की, मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। 1975 में एक लेख कल्पना में छपा था, उसमें खुद दुष्यंत जी ने लिखा कि मैं 25 वर्षों से उर्दू गजल को देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ का मतलब क्या है? मैं उसको आत्मसात कर रहा हूँ, या कहें सीख रहा हूँ, या देखने का मतलब ही होता है। तो हिंदी गजल हो, पंजाबी गजल हो, गुजराती गजल हो, मराठी, किसी भी भाषा में गजल आएगी तो उसको उर्दू गजल से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो ये सिद्ध की दुष्यंत जी ने। और जब ये मुजफ्फर हनफी साहब एक बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं उर्दू में, जो 60 और 73 के बीच भोपाल में रहते थे, वो उनका एक इंटरव्यू छपा था गुफ्तगू दूबदू पत्र नाम से
1: जी।
2: तो उसमें कहा था कि दुष्यंत हमारे पास आते थे, सीखते थे, तो उसमें फजल ताबिश, इशरत कादरी, ये यानी उनमें उठे बैठे हैं। तो दुष्यंत जी को जो लोग कहते हैं ना जी हिंदी गजल, ऐसा तो है हिंदी में वो लाए, लेकिन उनकी बैकग्राउंड निश्चित रूप से उर्दू की थी। उन्होंने ये बताया मुजफ्फर अनवी साहब ने कि जब वो गजल पढ़ते थे तो उनकी खामियां थी बहुत सारी, वो देख रहे होंगे अपने उर्दू और उसके हिसाब से, जैसा शर्मा जी ने कहा ना। लेकिन हमारे यहाँ इसमें हिंदी में मात्र एक छंद है, उर्दू का अलग से एक विधान है। तो उन्होंने बहुत पहले यानी 60 और 73 के बीच में ये कहा था कि दुष्यंत के यहाँ फनी लिहाज से कमियां हैं, लेकिन वो अपना हिंदी में एक विशेष स्थान बना चुके हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। फिर जो है कल्पना में इनकी 16 गजलें छपी। अच्छा, तो दुष्यंत जी के समय से पहले भी गजलें हो रही थी, उनके साथ साथ भी हो रही थी, उनके बाद तो अब एक पूरा कार्रवाई चल पड़ा है। तो लोग ये प्रश्न भी करते हैं और जिज्ञासा भी रहती है कि साहब दुष्यंत क्यों, उससे पहले और भी थे, उनके साथ साथ और भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे पहले जो गजलें लिखी ना, जैसे निराला जी ने लिखी मान लीजिए, तो वो एक टेस्ट बदलने के लिए था। निराला जी गजल, इन्होंने 16 गजलें लिखी, फिर उसके बाद साए में धूप आई, गजल पर केंद्रित होकर अच्छी तरह से, तो उनसे पहले या बाद के तुलना करना तो नहीं, लेकिन दुष्यंत ने जो एक नई जमीन तैयार करी, नए अंदाज से शेर कहने शुरू करे, उस समय सत्ता के खिलाफ, आम आदमी की पीड़ा, ये बहुत ज्यादा उर्दू शायरी में नहीं आई है, जदीद शायरी में आए, फिर बाबा जदीद में आए, लेकिन वो जो लाए तो उसमें, और ऐसा भी नहीं है कि साहब उन्होंने सिर्फ यही कहा हो, सत्ता के विरोध करा हो, शायरी करी हो, लेकिन उनके यहाँ जो मैंने देखा, उनको पढ़ा समझा, उनके यहाँ गजल में गजलियत भी है। जो बात वो कह भी रहे ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसे कहते हैं हिंदी गजल। इसके प्रतीक हमारे हिंदी के, इसका कथ्य हमारा हिंदी का, और एक पीड़ा उसको उर्दू गजल का परंपरा और नई सोच और नया लहजा, ये सारा मिलाकर ऐसा उनका काम हो गया कि पूरी गजल के समाज में, साहित्य समाज में वो एक प्रतीक बन गए। और आज की डेट में ठीक है, बहुत लोग हैं सीनियर, उनको उनके समकक्ष भी हैं, लेकिन दुष्यंत के बाद या दुष्यंत या प्रकाश स्तंभ, ये सर्वमान्य हो गया, कोई इसको माने या ना माने, दुष्यंत के बाद दुष्यंत को ही हिंदी गजल में कोट करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि दुष्यंत के बाद जो गजलें हुई हैं वो हल्की रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। दुष्यंत की गजल की वो जमीन जो तैयार की थी वो बहुत फल फूल गई है
1: जी।
2: बहुत आगे चली गई है, मैं कहता हूँ दुष्यंत से भी आगे, जमीन के उस पेड़ पर फल लगने लगे हैं, वो फल उनसे भी आगे चले गए हैं। ये अच्छा होता है, कोई आदमी हमें पौधा रोपे और वो फले फूले तो वो अच्छा लगता है, उस विधा के लिए भी और साहित्य के लिए भी। बल्कि बच्चन जी ने तो कह दिया था हिंदी भाषा में गजल लिखना संभव ही नहीं है, बच्चन जी ने कहा था ये। रामदास मिश्र जी ने कहा था गजल हिंदी की प्रवृत्ति नहीं है। अब शर्मा जी तो कह रहे हैं ना जी कि ये हिंदी में मान्यता नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं शुरू से, लेकिन आज उन सब वर्जनाओं को तोड़ते हुए हिंदी गजल पूरे अपने आप होताप के साथ
1: बिल्कुल
2: समाज में है और बड़ी लोकप्रिय हो रही है, और मैं बड़ा आशान्वित हूँ।
1: धन्यवाद। तो आपने जो बताया बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अनिल वर्मा मीत जी मौजूद है हमारे साथ। तो मैं मीत जी से ही पूछना चाहूंगा कि आज दुष्यंत जी के जाने के लगभग 51 वर्ष

0: बात को पुष्ट करते हैं कि अपने अपने काम में है व्यस्त सब, घर में एक बूढ़े की सुनता कौन है। हरे राम समीप जी इस संवेदना को पकड़ते हैं और बड़े सीधे शब्दों में हमें उनकी पीड़ा से रूबरू करा देते हैं। अब मैं प्रेमकरण जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अब तो मायूस ही लौटा है खिलौने वाला, एक बच्चा न मिला गांव में रोने वाला। और एक मैं अपना शेर आपकी इजाजत से
1: जी जी
0: नजर करना चाहूंगा जी, शर्मा जी की जी। सब्ज कैसे देख लें आंखें मेरी, सब्ज कैसे देख लें आंखें मेरी, जर्द पैदा हो रहा पत्ता नया। तो ये जो विषमताएं हैं, जो हम चाहते हैं और जो हो रहा है उसमें जो अंतर है, उसी की विषमता को ढकने के लिए हिंदी गजल अपने तेवर बदलती है। और मैं कहूँगा कि ये अपना मिजाज बदलती है, कहन बदलती है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत खूब, धन्यवाद आपका भी। और अब फिर मुखातिब होते हैं डॉक्टर शर्मा से। असल ये दुष्यंत की गजलों में जो बहर काफिया रदीफ का इस्तेमाल किया गया है, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नजरिया इस बारे में?
1: सिरा मैं जोड़ता हूँ दीक्षित धनगोड़ी साहब की बात से ही, और मित जी को भी हमने सुना। नजारा लफ्ज का आपने इस्तेमाल देखा होगा कि जो उर्दू अरूज का जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, नजारा भी करते हैं, नजारा भी करते हैं। यानी छंद की जो मांग है, बहर की जो तवक्को है, उस हिसाब से ये आजादी ली जाती है। मैं वहीं आता हूँ लौटकर, जब धर्म युग में ये गजल दुष्यंत की छपकर आई, कहाँ तो तय था चराग हरेक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। ये गजल जब उनकी छपकर आई तो उस वक्त में वहाँ किसी स्थानीय कॉलेज में हिंदी का व्याख्याता था, और ईमानदारी की बात यह है कि मेरा बहुत संकीर्ण सोच था गजल को लेकर और भाषा को लेकर, क्योंकि मेरी जो संगत है या संगति है या उठना बैठना है वो उर्दू के मित्रों के बीच में ही रहता था शुरू से, और वो इतनी सख्तगिरी अपनाते थे कि जरा जेर जबर का जरा सा अंतर हुआ तो आप खारिज, शीन काफ में जरा सी उच्चारण में अगर गलती हो गई तो आप खारिज
2: जी।
1: हालांकि इसके कोई लाभ भी होते हैं कि आपका उच्चारण दोष दूर होता है इससे और आप शब्दकोश के प्रति सजग रहते हैं, पर इसकी हानियां ये होती हैं कि लोग इससे दूर छिटकने लगते हैं। तो बड़े एक कठोर अनुशासन में मेरा उस समय मानसिक विकास हो रहा था, दुष्यंत कुमार की गजल छपकर आई तो मैंने अपनी वही जो समझ थी, जो एक संकीर्ण सोच था बहुत ज्यादा कि भाई शहर क्यों, यहाँ तो जो गिर रहा है ये क्यों, अब इस एक गजल के अंदर ही पांच गलतियां हैं उस हिसाब से आप देखेंगे तो मैंने ये उसमें रेखांकित करके, और फिर एक जगह उनका आया कि मशाल, एक जगह आया कि होमो हवन, फिर एक जगह आया आमद रफ्त। आमद रफ्त प्रयोग गलत है, आमद और रफ्त होगा, आना और जाना, वो यानी और के लिए, तो और तो दुष्यंत ने खत्म कर दिया। एक जगह रख रहे हैं आप होमो हवन तो लिख रहे हैं आप, होम और हवन, और होम जो है वो संस्कृत का शब्द है, हवन भी संस्कृत का शब्द है, हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार भी गलत है। हिंदी व्याकरण के अनुसार आप संस्कृत के दो शब्दों के बीच में आप समास चिन्ह लगाकर लगा सकते हैं, या आप पिता पुत्र में लगाए बिना समास चिन्ह तो वो दो का अर्थ देगा, पिता और पुत्र। तो होम हो हवन यानी आप फारसी के हिसाब से आपने समास बना दिया संस्कृत का, और जो फारसी का समास था उसमें वो आपने निकाल दिया। तो ऐसी कुछ बातें सख्ती के साथ मैंने लिखकर उनको जो है पत्र वहां लिखा दुष्यंत। एक जगह सफील शब्द का इस्तेमाल भी किया उन्होंने दीवार के लिए, दीवार के लिए तो फसील शब्द होता है फारसी में, उन्होंने सफील शब्द का, एक जगह मशाल शब्द का प्रयोग है। तो हालांकि मैं गलत था आधा, ऐसा पत्र लिखते हुए मैंने अर्ज किया ना कि मैंने बहुत सुधार किया स्वयं में दुष्यंत कुमार जी के साहचर्य में, तो कुछ बातें तो मेरी सही थी लेकिन कुछ बातें बहुत सख्ती थी, बहुत, जैसे मशाल है। अब मशाल अगर दुष्यंत कुमार का गलत है तो फिर निराला का भी गलत होगा। राम की शक्ति पूजा की पंक्ति पढ़ू मैं आपको, भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है, तो वे निराला भी गलत हुए यहाँ। तो दरअसल दुष्यंत कुमार सही इसलिए थे कि हिंदी जन समुदाय उर्दू शब्दों का जिस रूप में उच्चारण करता है हमें

0: उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं खुद उर्दू में लिखता हूँ, बाकायदा नियमित रूप से लिखता हूँ मैं, और मैं मशअल कहूंगा उर्दू वालों के बीच में, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं खुद घर में मशाल कहता हूँ और उर्दू वाले भी घर में मशाल ही कहते हैं। मश अब साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल प्रसिद्ध वो गीत है। तो अब दुष्यंत कुमार सही इसलिए थे कि उर्दू शब्दों का जो प्रयोग सर्वमान्य हो चुका है उसको हमें कविता में भी स्वीकार कर लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
2: महत्वपूर्ण बात है आदरणीय।
0: ये उनका पक्ष था दुष्यंत कुमार का। अब रही इसकी बात कि वो लोगों ने खामियां निकाली, दरअसल बात यह है कि ये मुजफ्फर हनफी वगैरह अनेक ऐसे लोग हैं जो दुष्यंत कुमार से ईमानदारी की बात यह है कि ईर्ष्या बरतते थे, क्योंकि दुष्यंत कुमार के पास जो है सोशल कंटेंट बहुत पावरफुल था। जो नई जमीन की आप बात कर रहे हैं, वो दुष्यंत आखिरकार साये में धूप की गजल ने किसने लिखी है? एक कंठ विश्वाई के लेखक ने लिखी है, जो 20वीं शताब्दी में अंधा युग के बाद एकमात्र ऐसा काव्य नाटक है इतना श्रेष्ठ, एक कंठ विश्वाई, जो शंकर पर लिखा है उन्होंने कि जब उमा ने वहां दक्ष के यज्ञ में समर्पण कर देती हैं और भस्म हो जाती हैं, तो उनके शव को लेकर जो भगवान शिव कंधे पर उसको ढोकर यहाँ वहां तीनों लोकों में चक्कर काट रहे हैं, तो इस पर वो एक कंठ विश्वाई लिखा है उन्होंने। तो एक कंठ विश्वाई के लेखक ने ये गजलें लिखी है। जलते हुए वन का वसंत के लेखक ने ये गजल लिखी है। 1952 में जब दुष्यंत कुमार की सूर्य का स्वागत इतनी प्रसिद्ध जो है उनकी कविता और उनकी जो किताब है जब छपकर आई, तो तमाम नई कविता के कवि जिसमें धर्मवीर भारती तक शामिल हैं दंग रह गए सारे के सारे, ये क्या लिख रहा है? प्रातः हुई, सुबह सुबह हुई है, सूर्योदय हुआ है, तो जो कवि कल्पना करता है कि ये दीवार पर चढ़कर ये किरणें मेरे घर में आना चाहती हैं, लेकिन बारिश का समय था, दीवार पर काई जमी हुई है, तो वो कह रहा है कि सूर्य तुम कैसे आओगे, तुम तो फिसल जाओगे चढ़ते हुए, तो मेरे बच्चे ने फिर भी अपनी कलम से दीवार पर से काई को खुरच दिया है ताकि तुम मेरे घर में प्रवेश कर सको। तो दुष्यंत कुमार की गजलें आकाश से नहीं उतर आई, इतनी सशक्त अंतर वस्तु अपने समय के गंभीर सवालों को एक दो पंक्तियों के अंदर व्यक्त कर देना, ऐसा नहीं है कि अचानक नाजिल हो गई, अचानक उसने 1974 में गजलें कहना शुरू कर दी, कोई चमत्कार तो है नहीं, कोई चीज अवतरित तो ही नहीं थी। ये दुष्यंत कुमार वो कवि है जो 1952 में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करा चुका था तमाम नई कविता के कवियों के बीच में। समापन करते हैं इस बात का यहाँ कि उर्दू और हिंदी के मध्य बैर या बेबनस्य की कोई बात नहीं है, जो जीवित भाषाएं हैं वे एक दूसरे से रस ग्रहण करेगी ही।
1: बिल्कुल,
0: जिस दिन हम प्रभावित होना बंद कर देंगे या प्रभावित करना बंद कर देंगे तो चेतना के स्तर पर उस दिन हमारी मृत्यु है। लचीली जो डाल है, जो लचीलापन जिसमें होगा वही आगे तक जीवित रहेगी।
1: डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताई हैं, और आप शर्मा एक बात और कहूंगा, मैं एक बात और आपसे कहूंगा अंतिम में कि आप दुष्यंत जी से काफी इससे जुड़े रहे हैं, एक कोई संस्मरण छोटा सा।
0: अब देखिए साहब, सितंबर का महीना था और बारिश हो रही थी और रवींद्र भवन भोपाल में प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का नाटक हो रहा था अंधों के हाथी। मैं उस समय मैं अपनी PhD का थीसिस जमा करने विश्वविद्यालय गया था, भोपाल विश्वविद्यालय। तो जमा करने के बाद लौटकर किसी ने बताया हमको कि वहाँ एक नाटक हो रहा है शरद जोशी का, चलो वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पहुँच गए हम, तो वहाँ पर जब नाटक के समाप्त होने के बाद वहाँ किसी ने बताया कि दुष्यंत कुमार हैं, तो अब क्या है, वही मन में जो रहता है कि कुछ नहीं तो नमस्कार तो कर ही लेंगे। वहाँ पर उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई, ये मुलाकात रही पहली। क्षमा करें आप आत्मप्रशंसा नहीं, मेरी गजलें भी नियमित रूप से कमलेश्वर जी सारी काम में पूरे पूरे पृष्ठों पर छापते थे।
1: जी वाह,
0: 50 मेरी गजलें उन्होंने छापी सारी काम में उसी दौर के अंदर। तो मैंने बताया कि सर मैं भी लिखता हूँ और कमलेश्वर जी ने मेरी गजलें भी यहाँ पर छापी हैं, तो किसी दिन फुर्सत से आओ। तो जनाब जो है वो जो मुलाकात थी उनकी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे लगा कि कोई आलिम फाजिल आदमी जो है ना, बहुत बुजुर्ग वो, और उसने मुझे धमका कर इस तरह से जो खत लिखा है ये तुम हो? बिल्कुल, उन्होंने जो है दोनों हाथों में भरकर मुझे वाकई छाती से लगाया और उन्होंने कहा कि अब तुम गजल पर लिखो। आप क्षमा करें, हिंदी गजल पर पहला जो लेख है ये इतिहास की बात है, दुष्यंत कुमार की प्रेरणा से, यद्यपि वो जीवित नहीं रहे, वो लेख मैंने ही लिखा है, वो रिकॉर्ड में है बात, और ऐसा लेख में

0: दिखता नहीं, वो दुष्यंत कुमार के तर्कों से ये बात आई यहां पर।
1: जी
0: तो उर्दू फारसी शब्दों के बाहुल्य के बाद भी
2: यही बात है,
0: जो गजल है वो हिंदी गजल हो सकती होनी चाहिए। और अंत में उनके दो शेर आप सुन लीजिए दुष्यंत कुमार के, एक पत्र में उन्होंने मुझे लिखे हाशिए में एक छूटी हुई जगह पर बिल्कुल। आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, आज हालात
2: समंदर
0: की तरह लगते हैं, सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं।
2: क्या कह,
0: आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं, किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, जो मेरे पांव में ठोकर की तरह लगते हैं। ये दो शेर आपकी नजर है,
1: इसीलिए दुष्यंत को दुष्यंत कहा जाता है। तो आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर जनकप्रसाद शर्मा जी, श्री दीक्षित धनकोरी जी और अनिल वर्मा मीत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हिंदी गजल नई जमीन, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक और समीक्षक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ शायर श्री दीक्षित धनकोरी, वरिष्ठ शायर और कवि श्री अनिल वर्मा मीत। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री राजेंद्र निगम राज। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां, प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कालीशंकर सौम्य।
4: विगत रविवार 20 सितंबर 2026 को युवा उत्कर्ष साहित्य मंच न्यास के तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विशेष काव्य समागम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के सदर क्षेत्र में आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम में कविता के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को स्वर दिया गया। काव्य समागम में श्री रामकिशोर उपाध्याय आयोजन अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम में IRTS के श्री शैलेंद्र कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ट्रू मीडिया समूह के मुख्य संपादक श्री ओम प्रकाश प्रजापति विशिष्ट अतिथि तथा समाज सेवी श्री अभिमीत मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी की साहित्यिक समृद्धि, मानवीय संवेदनाओं और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को अभिव्यक्ति दी। 20 सितंबर 2026 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली कविता मंडल की ओर से कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साहित्यिक कार्यक्रम में हिंदी कविता के माध्यम से साहित्य प्रेमियों ने शब्दों और भावनाओं की समृद्ध दुनिया का आनंद लिया। दिल्ली कविता मंडल के इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि को बढ़ावा देना तथा रचनाकारों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना रहा। गोष्ठी में कविता के साथ गजल और शायरी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विविधतापूर्ण बनाया। कार्यक्रम में श्री प्रेम बिहारी मिश्र अध्यक्ष तथा श्री नीरज चौहान संयोजक की भूमिका में रहे। आयोजन ने हिंदी दिवस को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखते हुए उसे साहित्यिक अभिव्यक्ति और रचनात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य किया। 21 सितंबर 2026 सोमवार को दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली में राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सर्व श्री उर्वी उदल, डॉक्टर अमृता अमृत, बाल कवयित्री सानवी जैन, रेशु रोशन तथा नेहा जैन आमंत्रित रचनाकारों में शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक जैन रहे। आयोजन के लिए सर्व श्री रविन्द्र प्रसाद जैन, अजय जैन, मुकेश जैन और अशोक जैन संरक्षक के रूप में जुड़े। इसके अलावा अध्यक्ष श्री पवन जैन, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र जैन एवं श्री राजीव जैन, महामंत्री श्री सुनील जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। 21 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान मुनीर का नई दिल्ली में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता संस्था के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार पात्रों ने की। कार्यक्रम में सर्व श्री डॉक्टर प्रवीण आर्य, सरिता जैन, ओम प्रकाश कल्याणे तथा डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव ऋषि ने काव्य पाठ किया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों को शब्द दिए। हास्य व्यंग संवेदना और विचार प्रधान कविताओं की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। 21 सितंबर 2026 को ही श्री दिगंबर जैन मंदिर मॉडल टाउन की ओर से दशलक्षण पर्व के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश प्रदेश के जाने माने कवियों तथा बाल कवयित्री ने भी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कवि सम्मेलन का मंच संचालन श्री सत्येंद्र सत्यार्थी ने किया। आमंत्रित कविगणों में सर्व श्री अजीत अनुपम, अंजना जैन, नम्रता जैन तथा बाल कवयित्री सानवी जैन शामिल रहे। 22 सितंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम

एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ कवि के रूप में शामिल रहे। साथ ही सर्वश्री ताकेश धर द्विवेदी, पंकज शर्मा, आलोक यादव, पवन आगरी और सरिता जैन ने अपनी अपनी काव्य प्रस्तुतियां दी। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा की विशिष्ट हास्य व्यंग शैली तथा अन्य आमंत्रित कवियों की विविध काव्य धाराओं ने कार्यक्रम को साहित्यिक और मनोरंजक दोनों आयामों में ऊंचाई प्रदान की। मंच पर कविता, हास्य और सामाजिक संवेदनाओं का संगम श्रोताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। 23 सितंबर 2026 को हिंदी पखवाड़े के अवसर पर दिल्ली सचिवालय के मुख्य सभागार में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस साहित्यिक समारोह में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से काव्य की विविध छटाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, मधुमोहिनी उपाध्याय, बलजीत कौर तन्हा तथा स्वदेश यादव ने काव्य पाठ किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदनाएं, संस्कृति और समकालीन जीवन के विभिन्न रंग दिखाई दिए। 23 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस अकादमी की ओर से हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत व्यंग के रंग शीर्षक से हिंदी कार्यशाला एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आदर्श सभागार पुलिस मुख्यालय दिल्ली में आयोजित हुआ। हास्य कवि सम्मेलन में ACP राजेंद्र कलकल वरिष्ठ कवि की भूमिका में विशेष रूप से शामिल रहे। साथ ही सर्वश्री दीपक सैनी, मास्टर महेंद्र, रजनी अवनी तथा राजवीर मलिक सहित आमंत्रित प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। 23 सितंबर 2026 को राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी मनोरंजन क्लब एवं हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से हिंदी है हम शीर्षक से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संसद पुस्तकालय स्थित GMC बालयोगी सभागार में आयोजित इस साहित्यिक समारोह में हास्य, गीत और ओज से जुड़ी काव्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा और समकालीन संवेदना को स्वर दिया। आमंत्रित कवियों में सर्वश्री रसिक गुप्ता, संदीप शजर, ओम प्रकाश कल्याणे तथा विनोद पाल सहित अन्य कविगण शामिल रहे। कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों में जीवन, समाज और मानवीय संवेदना से जुड़े विविध विषयों को अभिव्यक्ति दी। 24 सितंबर 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सर्वश्री दीपक गुप्ता, आशीष नासवा, बबिता पांडे, विनय विनम्र तथा रीत राधिका ने काव्य पाठ किया। अलग अलग भावभूमि और शैलियों की रचनाओं ने विद्यार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों को कविता की दुनिया से जोड़ा। कार्यक्रम में कविताओं को भावनाओं, विचारों और कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में सामने रखा गया। कवियों की प्रस्तुतियों में समकालीन जीवन, सामाजिक संवेदना, मानवीय रिश्तों और साहित्यिक अनुभूतियों के विविध स्वर सुनाई दिए। युवा विद्यार्थियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने साहित्य के प्रति रुचि और रचनात्मक संवाद को भी प्रोत्साहित किया। उड़ान कविता की शीर्षक ने कार्यक्रम की मूल भावना को सार्थक किया। 25 सितंबर 2026 को दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्यकार सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में श्री चंद्रभानु आर्य को सम्मेलन साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया। वहीं सर्वश्री डॉ. अंजू दुबे जैमिनी, कमलेश पांडे पुष्प, धर्मशील अग्रवाल, अशोक कश्यप, नीलम मदान और पुष्पा सिन्हा को सम्मेलन साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त श्री बाबा कानपुरी को सम्मेलन साहित्य भूषण सम्मान, सुश्री कविता विकास को सम्मेलन साहित्य श्री सम्मान तथा डॉ. मनोज गिरी और सुश्री नीति जैन को भी साहित्यिक सम्मान प्रदान किए गए। करोल बाग स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से संस्कृतोत्सव प्रदर्शनी 5.0 का आयोजन 25 सितंबर को किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी की थीम संस्कृति संस्कृताश्रिता रही और कार्यक्रम का संदेश जयतु संस्कृतम जयतु भारतम रखा गया। प्रदर्शनी में ज्ञानम, संस्कृतम, सर्जनम और भारतीयत्वम जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम के आरंभ में बोलते हुए प्राचार्य श्री दीपक दुआ ने कहा, संस्कृत ही हमारी संस्कृति का आधार है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व उच्चायुक्त श्री अखिलेश मिश्रा ने कहा कि संस्कृत ही विश्व की तमाम भाषाओं की जननी है। इसी अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति डॉ. मुरली मनोहर पाठक ने कहा, संस्कृत और भारतीय संस्कृति हमें फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति की महत्व

0: की एक जीवंत प्रदर्शनी भी स्कूली छात्र छात्राओं ने ही नृत्य, नाटक और काव्य पाठ की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्राचार्या श्रीमती विनीता धवन एवं सर्व श्री नीता निझारा, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर युवराज भट्टराई सहित अनेक साहित्य और संस्कृत कर्मी मौजूद रहे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्री कालीशंकर सौम्य। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: और श्रोताओं, अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम, हमारे अतिथि का। कुछ पलों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम।
3: सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश जी से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी देखने का हुनर सिखाती है। ये एक पल है, शटर दबाने के बाद वो पल कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काजल। आज हमारे साथ है फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश जी। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार।
3: तो पहला सवाल तो ये है कि आजकल फोटोग्राफी कहते हैं बहुत आसान हो गई है, क्योंकि मोबाइल में कैमरा होते हैं और हर कोई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लेने में सक्षम हो गया है। लेकिन जब फोटोग्राफी को हम करियर बनाने की जब हम बात करें तो बहुत कुछ जानना जरूरी हो जाता है। करियर के संदर्भ में फोटोग्राफी को आपके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि ये कला है या ये कोई विज्ञान है, क्या है?
4: ये टेक्निक बहुत ईजी हो गई है, लेकिन अभी क्या होगा, फोटो एक आर्ट भी है और एक इसको कहा जाए प्रोफेशन भी है। इसमें भी अलग अलग कई कई तरह के प्रोफेशन है, जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, कोई पोर्टफोलियो बनाता है, कोई ट्रेवल फोटोग्राफी करता है, कोई डांस के स्पेशल होता है। टेक्निक अच्छी होने के साथ साथ हम बहुत सारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
3: बिल्कुल,
4: आज के दौर में हर कोई फोटोग्राफर है, हर किसी के मोबाइल में एक अच्छा कैमरा है
3: जी।
4: लेकिन फोटोग्राफी करने के लिए कहते हैं ना, एक शब्द हजार शब्दों के बराबर होता है।
3: बहुत खूबसूरत।
4: एक तो आजकल सेल्फी से अगर हटे तो फोटोग्राफी की तरफ सोचा जाए
3: जी,
4: क्योंकि फोटोग्राफी वो है कि आपका एक वो मोमेंट कैच करना है। जैसे मैं कारगिल वॉर गई, उस कारगिल वॉर में वो लॉन्चर जो था, रॉकेट लॉन्चर से जो शेल गिर जा रहा था, वो बहुत परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट था, परफेक्ट फोटो थी। उसे भारत सरकार ने, आईएनबी मिनिस्ट्री ने अवार्ड भी दिया। टेक्निक जो है ये आपको मोमेंट कैच करने के लिए कैरियर के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पेशेंस है, क्योंकि ये बैठने की जॉब नहीं है, फील्ड वर्क है, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, तरह तरह के आपको अनुभव होते हैं। जैसे मैं ट्रेवल फोटोग्राफर हूँ, इस कैमरे ने मुझे तो पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, कई कंट्री घुमा दी। तो का शौक अगर फोटोग्राफी आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे तो बढ़िया कुछ नहीं है। तो फोटोग्राफी आपको एक पहचान भी दिलाती है, आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके लिए हमें अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। फोटो तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी फोटो बहुत कुछ कहती है,
3: बहुत कुछ कह जाती
4: है। एक फोटो कई कहानियां बना देती है अलग अलग ढंग से।
3: बिल्कुल,
4: इसीलिए ये टेक्निक अच्छी हो गई है, लेकिन हम अपने दिमाग को थोड़ा सा खुल के रखेंगे तो हम ज्यादा कर पाएंगे,
3: ज्यादा
4: और कैरियर इसमें पैसा भी अच्छा है। लेकिन वही वाली बात कि आपको मोमेंट कैच, आपको हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ेंगी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पल है जिस तरह से मैंने कहा कि जो शटर दबाने के बाद वो पल कभी लौट कर नहीं आता।
4: अब जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, तो मैं एक बार केदारनाथ से ऊपर एक जगह है बासुकी ताल, तो गाइड को लेकर जा रही थी और बर्फ से जा रहे थे। अच्छा, गाइड बाई चांस वो फिसल गया, तो मैं ऐसी जगह थी कि मैं, मतलब मेरे को सारे भगवान याद आ गए, रोने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, निकल आई उस पत्थर से, पत्थर एक अड़ गया था, तो बेचारा आया गाइड, तो जान में जान आई। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव भी हैं कि आपको फोटोग्राफी में आपको हिम्मत देते हैं, आपको आप कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं, तो आप निकलिए तो सही, आपको बहुत एक से एक मोमेंट मिलेंगे। परेशानियां आएंगी बहुत सारी, लेकिन आपको उस परेशानियों से बचने के लिए आपको दिमाग भी आपका शार्प होगा,
3: शार्प होगा, क्योंकि इमेजिनेशन,
4: जी जी इमेजिनेशन भी है, और आपको एकदम हमेशा खुला रखोगे तो पता नहीं कब क्या कैच, क्या करना पड़ जाए, एकदम तुरंत आपको शूट करना है,
3: फोकस रहना है एकदम।
4: और अब तो तकनीक इतनी बढ़िया आ गई है, इसको तो और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, सब खेलिए ना, नहीं करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फी जाएंगे, सेल्फी करेंगे। हमें दूसरों का कल्चर देखना है। जिस समय जब हम थे ब्लैक एंड व्हाइट के थे, ब्लैक एंड व्हाइट में हम इसको धो रहे हैं, फिर उसको ड्रम स्कैनिंग, और पता नहीं कितना टाइम लगता था एक फोटो भेजने में, और आज टेक्निक से हम बहुत आगे बढ़ गए।
3: आपने जिस तरह से कहा

0: फोटोग्राफी बहुत तरह की होती है, वेडिंग फोटोग्राफी, ट्रेवल फोटोग्राफी, कई किस्म की. कुछ कोई ऐसा है कि सब में एक तरह से किस तरह की टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी ले रहे हो या ट्रेवल में जा रहे हो या कुछ और जो आप बताना, जो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, कितने तरह की होती है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
1: देखिए, वेडिंग की या पोर्टफोलियो की है,
0: जी
1: आपको एक फोटो में वो क्लिक करना है जो कई कहते हैं ना, हमारी फोटो अच्छी नहीं आती,
0: बिल्कुल.
1: आपको वही उसके एक्सप्रेशंस आपको ये करने हैं उनको बिना बताए, फिर देखिए वो कितनी अच्छी आती है. कई लोग कहते हैं अरे मैं ऐसी हूँ, मुझे भी नहीं
0: अरे
1: पता था. तो
0: वाह.
1: ये आपको टेक्निक आपके अंदर से आएगी, कहते हैं ना शौक होता है, आपको शौक होना चाहिए
0: हाँ
1: आपको इसमें. तो ये टेक्निक, तो इसीलिए आपको अपने स्वाद अनुसार, जैसे कि नमक डालते हैं ना,
0: नमक डाल,
1: ऐसे ही आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या
0: बिल्कुल
1: आपका स्पोर्ट्स में है.
0: बिल्कुल.
1: जैसे मेरा ट्रैकिंग है, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं दुनिया भर के उनका कल्चर दिखाती हूँ,
0: अरे
1: उनका जैसे
0: वाह.
1: आदिवासियों के बीच में चली जाती हूँ तो उसके बीच में उनका कल्चर दिखाना बहुत सारा, एक से एक. जैसे मैंने घोटुल कवर किया था, उनका कल्चर क्या है, हमसे वो बहुत एडवांस है. तो
0: जी.
1: आदिवासियों का जीवन फोटो के द्वारा आप दिखा सकते हैं. हर कोई तो आदिवासियों के बीच में जा नहीं सकता, लेकिन आपको फोटो के द्वारा दिखा सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: समुद्र भी हर कोई नहीं जा सकता, समुद्र में कैसे जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं या कुछ है, तो आप अपने फोटो के द्वारा दिखा सकते हैं. जैसे मैंने तो कई सारी एग्जीबिशंस की हैं, तो फोटो के द्वारा आप बहुत कुछ चीजें दिखा सकते हैं, बहुत जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आपका होना चाहिए.
0: बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: बहुत ज़रूरी है. कि वो कहते हैं ना कि लम्हा लम्हा ज़िंदगी है, और इन्हीं लम्हों को हम फोटोग्राफ्स के ज़रिए कैद कर लेते हैं, और ज़िंदगी के हर पल को फोटोग्राफ्स जो हैं वो संजो लेते हैं. तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते आप जो फोटोग्राफी है उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहें?
1: प्रोफेशन देखिए, आप अपना चैनल बना सकते हो. आजकल मैं आज के संदर्भ में कह रही हूँ, न्यूज़पेपर अगर आपकी थोड़ी अलग हटके हुई, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, प्रिंट मीडिया में दे सकते हो. फिर दूसरी बात, अगर प्रिंट मीडिया में विजुअल लोग चाहते हैं, आजकल तो वीडियो भी इजी हो गई है, जिससे कैमरा ये किया फोटो की उससे वीडियो भी बना सकते हैं, तो आप तो एक पन दो काज कर सकते हो, वीडियो की वीडियो और कैमरा कैमरा, किसी किसी यूट्यूबर को दे सकते हो, किसी को भी. और सबसे बड़ी बात कि आप जहां भी हैं आप अपना काम करते रहिए, दिमाग खोल के रखिए, कब कहाँ क्या मिल जाए
0: क्या
1: कुछ
0: मिल जाए
1: कुछ नहीं पता.
0: कुछ नहीं पता.
1: और फिर वो कहाँ से, कहते हैं ना कई सारी चीजें वायरल हो जाती हैं, जी वो वायरल हो गया, वो वायरल हो गया. ये आज की टेक्निक है.
0: बिल्कुल
1: पहले तो हमारी फोटो छपती थी तो अलग बात थी, लेकिन आज तो और इजी हो गया है.
0: बिल्कुल
1: तो और लेकिन आपको
0: जी,
1: इसके लिए वही वाली बात, के दिमाग खोल के रखना
0: खोल के
1: पड़ेगा.
0: रखना पड़ेगा. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने. जो हम महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, वो शुरुआत कहाँ से करें, किन स्किल्स पे वो काम करें कि उनकी योग्यता निखरे?
1: शुरुआत, मैंने कहा इसमें एक तो पेशेंस की बहुत जरूरत है. शुरुआती दौर पे आपको अपना एक कैमरा लेना पड़ेगा, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल जर्नलिज्म या मोबाइल फोटोग्राफी भी हो गई है,
0: बिल्कुल.
1: आप अच्छे से अच्छे खींच सकते हो. कई लोग बड़ा ये चाहते हैं कि हमें ये दो. शुरू में थोड़ा सा कठिनाई हो गई है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है.
0: जी.
1: कॉम्पिटिशन बढ़ने से आपका जरूर थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं फाइनेंशियल, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारा अच्छा, एक एक एक स्थापित अगर हो गए तो आपको अच्छा पैसा भी मिलता है. लेकिन हाँ ये है कि पहले से, क्योंकि हर कोई कंपटीशन है, आप कंपटीशन में जाने के लिए आप तैयार हैं. आपको
0: बिल्कुल.
1: 24 आवर्स कहीं आग लगी या कुछ लगा है तो आपको जाना पड़ेगा. लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको, मतलब आपको खुद शौक हो जाएगा.
0: बिल्कुल. तो क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें करियर बनाने के लिए फोटोग्राफी के फील्ड में?
1: आप जितना अनुभव लेते जाएंगे उतना ही, आप कहते हैं ना
0: करेंगे.
1: आटा गूंदने की कभी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आटा बिल्कुल परफेक्ट अपने आप आ जाता है. तो
0: जी.
1: ऐसे ही इसी में है, बस ये है कि आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगन के साथ करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे.
0: जी, कर
1: बस
0: रहे
1: ये
0: हैं.
1: है, आपको अपना डर हटाना पड़ेगा. शुरुआत करिए ना, शुरू में
0: डर के आगे
1: थोड़ी,
0: जीत है.
1: हाँ डर के आगे जीत है. और शुरुआत में जरूर थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, उसको साइडलाइन कीजिए और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं
0: जी,
1: रोकेगा.
0: जब फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं कैमरा से, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो पिक्सल और मेगापिक्सल, इस तरह की बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं. तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें, सरल शब्दों में जानना चाहें, तो क्या कहेंगे पिक्सल
1: पिक्सल क्या
0: मेगापिक्सल?
1: होता है, इसके कैमरे की क्वालिटी होती है. जितना अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपकी फोटो आएगी. पिक्सल इसमें डॉट डॉट होते हैं, कई हजार लाखों होते हैं, तब जाके एक फोटो बनती है. तो जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही कैमरे में होता है, उतना ज्यादा आपको अच्छी फोटो होगी, क्लैरिटी होगी फोटो में. तो ये है. और वही मैंने कहा ना कि अब तो इतना टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए बड़े कैमरे की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल एक जरूर अच्छा लेना है.
0: अच्छा फोटोग्राफ लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अच्छा कैमरा या टेक्निक या आपकी इमेज?
1: कहते हैं ना हमें दोनों आंखें जरूर चाहिए, इमेजिनेशन.

0: हमारे दिमाग में है, इसका अगर एक साथ वो बना दिया जाए तो फोटो कहाँ से कहाँ आ जाती है।
1: जी
0: और आपकी जागरूकता, फोटोग्राफी के लिए भी जागरूकता, आपका कैमरा और आपकी इमेजिनेशन, तीनों का ये हो जाए, कहते हैं ना कि कोई कुछ नहीं और आप कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये तीनों चीजें एक साथ दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे तो खैर 32 साल हो गए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको अपने आप ही ये निकलेगा। नहीं नहीं नहीं खाना भूल जाएंगे कई बार, ये लगेगा कि नहीं नहीं अरे वो करना, अच्छा अच्छा अच्छा ये देखा। एक ही चीज जो फोटोग्राफर है वो अलग नजर से देखता है, जो आम आदमी है वो अलग नजर से देखता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपके अंदर वो एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हुनर सिखाया नहीं जाता, हासिल किया जाता है। आपके अंदर के विजन को आपको खुद ही पैदा करना है, तो इसके लिए पैशन का होना बहुत जरूरी है ना। तो
0: बिल्कुल,
1: क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: देखिए पैशन
1: जनून हो
0: नहीं,
1: तो कुछ भी हो सकता
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, पैशन नहीं है तो फिर आप, मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में पैशन के बिना कुछ नहीं होगा। फिर टेक्निक और फिर अपना दिमाग, ये सब करना पड़ेगा।
1: जी
0: ये लीक से थोड़ा अलग हटके हैं, इसीलिए
1: जी
0: आ रही हैं इस क्षेत्र में महिलाएं। और दूसरा, जैसे फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं तो उसमें काफी जा रही है, क्योंकि रात के 12 बजे तक फैशन फोटोग्राफी या कुछ है, वो भी एक अलग तरह का है, उसकी भी एक अलग, उसका भी अपना एक अलग बाजार है। तो जैसे कारगिल वॉर में गए,
1: बिल्कुल
0: तो कारगिल वॉर मैं क्योंकि एडवेंचरस हूं तो मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगी, भूकंप आया वहां चली गई, सूखा गया वहां चली गई, कोई राइट्स हुए तो वहां चली गई। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे
1: बहुत
0: हाँ,
1: चैलेंजिंग
0: तो मैं क्योंकि ट्रैकर हूँ, रनर हूँ, दौड़ती हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा मैं लीक से अलग हटके हूँ, तो इसके लिए लगन तो आपके अंदर होगी तभी आप कुछ कर
1: पैशन
0: पाएंगे।
1: हो, जुनून हो, तभी
0: हाँ
1: कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जिस तरह से आपने बात की कि एक बहुत अच्छा करियर तो है ही, तो कौन सा फोटोग्राफी में अगर किसी ने करियर के रूप में फोटोग्राफी को अपनाना हो, तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं फोटोग्राफी में ही करियर को लेकर? जैसे आपने कहा ट्रेवल फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, तो कौन सा ऐसी जगह, क्षेत्र है जहां फोटोग्राफी में करियर को लेकर ज्यादा संभावनाएं हैं?
0: नहीं ये मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना, अपने स्वाद के अनुसार नमक
1: नमक
0: डालना
1: डालना है
0: है, तो
1: जी बिल्कुल।
0: आपको अपना, आपको क्या चाहिए, क्या ट्रैवल फोटोग्राफर बनना है, या ट्रैकर फोटोग्राफर बनना है, या फिर आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में भी
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे, बहुत सारा अच्छा पैसा भी है, और क्योंकि उसको शूट करने का भी एक अलग ही है, प्री वेडिंग और ये सब होता है। तो आपको अपना, आपको अपना क्या शौक है, क्या करना चाहती हैं,
1: जी
0: सबसे पहले आप
1: जी
0: खुद ये तय करेंगी।
1: जी
0: आपको तय करना है कि आपको क्या करना है,
1: क्या
0: क्या
1: करना
0: बनना
1: जी
0: है, और
1: बिल्कुल
0: क्योंकि स्पोर्ट्स में जाना है या पोर्टफोलियो करना है या एडवेंचर करना है, तो ये
1: जिस तरह
0: आपके
1: से
0: हैं।
1: आपने कहा आप ट्रेवल फोटोग्राफर रही हैं, ट्रैकिंग करती हैं, एडवेंचर फोटोग्राफी भी आपने की है, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
0: देखो एडवेंचर फोटोग्राफी तो सबसे ज्यादा टफ है, एडवेंचर फोटोग्राफी में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं है, काफी टफ है। आप फिल्म मेकिंग में भी आप जा सकते हो, फिल्म का कैमरा पर्सन बन सकती हो, और
1: डीओपी हो
0: इसीलिए
1: जाते
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको, आपके अंदर कितनी हिम्मत है,
1: और
0: तो एडवेंचर में थोड़ा सा हाँ
1: आत्मविश्वास का होना
0: हाँ
1: बहुत जरूरी, कि इसमें यही है जिस तरह से आप कहती रही हैं कि डर के आगे जीत है, आपको डरना नहीं है, काम करना है और आत्मविश्वास के साथ काम करना है। तो कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे, कुछ खास टिप्स फोटोग्राफी से जुड़े हुए आप देना चाहेंगे?
0: मैं तो एक बात कहूंगी कि फोटोग्राफी में आने पे ज्यादा मजा आता है, देश का घूमने का भ्रमण भी हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पैसे भी मिलते हैं, और फिर आपको, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समाज का एक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप सोचना होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ। वही वाली बात, डर के आगे जीत
1: डर के
0: है।
1: आगे जीत है। सर्वेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में आज की अतिथि थी जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश। इनसे बातचीत कर रही थी काजल सूरी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर

पर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह

दर से खुशियों की मदमस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे, खुशियों की मदमस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे।

0: बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला।
1: शनवंदगान अजीज, तरानी ये बादी राम बेसदाई मोहम्मद रफ़ी इस्तेमाल फरमाईद।

وجعلوا بيوتكم قبلة.

ये आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: हर रविवार 12:10 पर हम हाजिर हो जाते हैं अपनी प्यारी ग्रामीण सखियों और बहनों के लिए और लेकर आते हैं उन्हीं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ रेनू तवर, यानी कि डबल रेनू है आज हम
1: और मैं हूँ रेनू सैनी
0: जी। तो हम दोनों मिलकर अपने प्यारे श्रोताओं को करते हैं राम राम, राम। तो भाई रेनो, आज देखो त्योहारों के जो चीजें चल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ कल से शुरू हुआ है पितृ पक्ष। हाँ, और ये हमारे धर्म में सबसे

0: कहते हैं ना, पूर्वजों के प्रति सम्मान होता
1: बिल्कुल
0: है, कृतज्ञता होती है, श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। तो एक बेहद ही पवित्र और बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना, उनके लिए भाव व्यक्त करने का समय
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और देखो रेनू, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत महान है। उसमें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कैसे पता चलेगा अपने पूर्वजों के बारे में।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो पितृ पक्ष है, कृतज्ञता हमें व्यक्त करने के लिए आते हैं, जो हर वर्ष आते हैं। साथ ही जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनको कि कैसे उनके अंदर संस्कार के जो बीज है वो रोपित होते हैं। क्योंकि जो
0: बिल्कुल
1: हमारे पूर्वज आज जो हमारे बीच नहीं है, वो अपने कर्मों से बहुत कुछ ऐसा करके जाते हैं जो सुविधाएं पहले नहीं थी, मगर अब
0: अब
1: हमारे
0: है ना,
1: पास हैं, आने वाली पीढ़ी के पास हैं, तो वो
0: बिल्कुल
1: उन्हें कैसे पता
0: कैसे मिले। और ये
1: चलेंगी।
0: कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तभी चलता
1: बिल्कुल
0: है जब उनके संस्कार,
1: बिल्कुल
0: उनके जो संस्कारों के बीज हैं, वो हम पर आए, फिर
1: बिल्कुल
0: हमने उनको आगे अपने बच्चों में डाला।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से ये कहते हैं ना, यादें हैं जो उनकी अच्छी अच्छी चीजें हैं,
1: बिल्कुल
0: जो हमेशा हमें समर्पित हम करेंगे, और आगे हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से उनको ये श्रद्धांजलि और उनको भी ये समर्पित करें, तर्पण दें, पिंड दान
1: बिल्कुल
0: दें। ताकि कहते हैं 15 से 16 दिन जो है ना, ये लोग हमारे दिवंगत परिजनों की जो मृत्यु है
1: बिल्कुल
0: उन पर हम उनको पिंड दान करते हैं। तो कहा जाता है जो इस समय हम जो उनके लिए करेंगे, या जो उन्हें पसंद था उन्हें
1: बिल्कुल
0: हम खिलाएंगे, उनके लिए दान करेंगे, तो वो उन तक मिलता है।
1: बिल्कुल उन तक मिलता है। और इसके पीछे पीछे मनोवैज्ञानिक यही अवधारणा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी इन संस्कारों को सीखें और कुछ ऐसा करें कि जीवन में देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के
0: पृथ्वी
1: लिए
0: के
1: जो
0: लिए सब
1: कल्याणकारी हो। तो
0: बिल्कुल
1: यही यादें जो होती हैं हमारे बच्चों को नई बातें सिखाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो हाँ, इस तरह से यादें रह जाती हैं और ये यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना। अच्छा, हम आज जैसे बात कर रहे हैं तो आज कुछ खास दिन भी हैं,
1: बिल्कुल
0: जैसे कि विश्व पर्यटन दिवस और
1: बिल्कुल। और जैसे सितंबर के चौथे रविवार को बेटी दिवस भी मनाया जाता है।
0: अच्छा
1: भाई देखो, आजकल बेटियां हैं तो सब कुछ है, बिना
0: बिल्कुल
1: बेटियों के ना घर हमारा जो होता है वो जगमगाता है और ना ही देश जगमगाता है, ये हम देख ही रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: विश्व
0: सही
1: नदी दिवस भी है आज।
0: जी। और हम आज बात करेंगे एक ऐसे महान राजनीतिक नेता की जो कि जिनकी आज जयंती है, हर साल 27 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 27 सितंबर 1873 को गुजरात के नाडियाल में हुआ था और उन्हें लोह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई जो हैं वो उनके बड़े भाई थे।
1: बिल्कुल
0: और इनकी बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं, वह पहले भारतीय स्पीकर अध्यक्ष रहे और इसी तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर काफी समय
1: बिल्कुल।
0: पर गुजारा
1: और
0: है।
1: इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। और देखो, इनके साथ साथ ही आज एक और बहुत ही महान व्यक्तित्व है जिनकी आज जयंती है। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहनों के लिए, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की। और
0: बिल्कुल
1: मन की बात में आज हमारे माननीय
0: माने
1: मोदी जी ने इनके
0: जी
1: कार्यों की सराहना भी की है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: देखो, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वही हमारे देश को आगे लेकर जाते हैं और कुछ ऐसी बातें छोड़कर जाते हैं जो कि हमारे देश का जो तिरंगा है वो पूरी शान से
0: शान से
1: लहराता
0: लहराता
1: है
0: है
1: और हमें प्रेरणा भी देता है।
0: बिल्कुल। और इसी से प्रेरित होकर हमारे जो आज के यंग जनरेशन है कि जो नव युवक हैं वो भी प्रेरित होते
1: बिल्कुल
0: हैं।

0: और हमारी ग्रामीण बहनों के लिए ये इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे तिरंगे को और ऊंचा उठाने के लिए, हमारे विश्व के जो पूरा विश्व है उस पे हमारे देश को की एक नई पहचान बनाने के लिए सेवा संकल्प अभियान के तहत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए राष्ट्र निर्माण, सेवा भाव और विकसित भारत के संकल्प पर भी जोर दिया है।
1: बिल्कुल
0: और हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारा देश है वो पूरी तरह से विकसित भी हो रहा है। और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच यह जो यात्रा चल रही है सेवा संकल्प अभियान की, और देखो रेणु, इसमें युवा पौधारोपण, स्वच्छता अभियान पर भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि अगर हमारे देश में
1: कहाँ सही
0: पौधारोपण
1: काम
0: होगा,
1: हो रहा
0: स्वच्छता
1: है।
0: अभियान होगा,
1: बिल्कुल
0: तो हमारा देश जगमगाएगा और हर ओर हरियाली से खिलखिलाएगा।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से कहते हैं ना कि हमारी जो महिलाएं हैं
0: बिल्कुल
1: हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से आप बात करें, योग हो, ध्यान
0: बिल्कुल
1: हो, ये भी
0: बिल्कुल
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस कार्यक्रम में जैसे बातचीत भी लेकर आते हैं और बहुत सारी खास बातें लेकर आते हैं जो
0: बिल्कुल
1: हमारी बहनों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा खास होती हैं। तो आज जो खास बात है वो हम लेकर आए हैं, जो कि योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य किस तरह से होता है। डॉक्टर एन एस यादव जो हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिन्होंने ये जानकारी दी, और इनसे जानकारी ले रही हैं कमलेश मुद्गल।
0: तो चलो भाई, हम अपनी बहनों को सुनवाते हैं योग करके, ताकि वो भी अपने आप को
1: अपने आप को स्वस्थ भी बनाए
0: सुन
1: और
0: और सुंदर
1: सुंदर भी
0: भी बनाए।
1: बनाए।
0: बिल्कुल
2: हर बहन चहकती रहे और उसके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनती रहे, क्योंकि पूरी गृहस्थी जो है वो हमारी बहनों के आसपास उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहूं तो रीढ़ की हड्डी हैं हमारी बहनें, क्योंकि घर उनके बिना चल ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए समय समय पर हम नित नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यनारायण यादव को, जो योग विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
2: जब भी हमारी बहनों से हम योग की बात करते हैं, बहनें कहेंगी हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि सुबह बच्चों का काम करना है, उसके बाद में फिर खेती बाड़ी का भी काम करना है, भाई हमारे पास तो योग का समय नहीं है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि योग के लिए चाहे 20 मिनट निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ समय आपको अपने उस शरीर के लिए देना है जिससे कि आप पूरे दिन दौड़ भाग करती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि योग क्या है?
3: योग आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, भारत सरकार ने योग दिवस के रूप में बहुत प्रचार कर दिया है। तो योग तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैरना, खेलना, टहलना सब जरूरी है, उस तरह से ऋषि मुनियों की एक ऐसी विद्या है जो अनेक प्रकार के आसन हैं, मुद्राएं हैं, कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाए, तो बीमारियों से बचने का और बीमारी से स्वस्थ रहने का एक मार्ग है योग।
2: जब हम बात करते हैं योग की तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये इतने कठिन आसन है, हम तो नहीं कर पाएंगे, इसमें इतना समय लगेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग की बात करें तो ऐसे वे कौन कौन से सिंपल आसन है जिन्हें की हमारी बहन करके स्वस्थ रह सकती है?
3: आजकल तो गांव-गांव में, शहर के हर जगह योग सिखाने वाले लोग हैं, तो अपने निकटतम जगह पर पूछे, उसमें कुछ आसनों का मैं नाम बताता हूँ महिलाओं के लिए। जैसे गोमुख आसन है, ताड़ासन है, कोण आसन है, सूर्य नमस्कार है, श्वास की क्रियाओं में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अगर इतना करते हैं तो वो हमेशा पर्याप्त है। दूसरा जो आज का संदर्भ है ध्यान का,
2: जी
3: ध्यान भी जरूर करना चाहिए महिलाओं को।
2: देखिए, योग का क्या एक समय निश्चित है, या जब योग करें तो योग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमारी बहनें रखें?
3: योग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं अपनी बहनों को कि योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम ध्यान ही नहीं है। योग का मतलब गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि युक्त आहार व्यारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगे।

0: नहीं दुखा, योग का मतलब होता है समय से भोजन करना, ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गांव के लोगों के लिए ईश्वर ने इतने कृपा किया है कि उनको सब्जियां हर सीजन में अलग अलग होती हैं, सीजन के अनुसार ही सब्जियां खाएं और फल खाएं, अनाज खाएं, तो जो उनके खेतों में जिस समय जो हो रहा है वो खाएं और समय से खाएं। और गांव के लोग तो अनुशासित होते ही हैं, सूर्यास्त से पहले जो भोजन कर लिया लेकिन सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें और ऋतु के अनुसार करें, सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तो वो भी एक योग है। दूसरा आचरण भी अपना अनुशासन करें, जैसे हम दूसरे के बारे में ना सोचें, दूसरे की आलोचना ना करें, वो भी एक योग है। और अपने काम को पूरा मन से पूजा समझ के, एक कर्तव्य समझ के, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे महिला हो, अगर अपने काम को पूरा ध्यान से करे, एकाग्रता से करे, वो भी एक योग है।
1: यानी योग जो है वो पूरे हमारी जितनी भी दिनचर्या है उस सब में समाया हुआ है, जो हम सुबह उठते हैं वहां से लेकर और रात को सोते हैं वहां तक। जब बार बार महिलाओं की बात करते हैं, अगर हमारी बहनें तनावग्रस्त होती हैं या परेशान हो जाती हैं, तो दूसरी बहन उनको सलाह देती है कि ऐसा कर, तूने ध्यान कर लिया कर, तो तनाव से ना मुक्ति मिल जाएगी। जब तनाव आता है तभी हम ध्यान की तरफ क्यों जाते हैं, तो ये ध्यान क्या है?
0: ध्यान कहने के लिए तो बहुत सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है
1: जी,
0: इसको बस समझ लिया जाए। ध्यान से जैसे दादी जी भी कहती हैं अपने पोते को जब जाता है, चाहे बेटे को भी कहते हैं माता पिता, ध्यान से जाना, ध्यान से टिफिन खा लेना। तो ध्यान का मतलब कि वर्तमान में रहना, जो भी हम काम करें अगर हम वर्तमान में अगर सांस भी लेते हैं। माता पिता हम कई बार सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोना है बचपन से ही, बाल कैसे रखना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि सांस कैसे लेनी है
1: जी।
0: हम अपने सांस को बैठ के कभी देखते हैं, बड़े से बड़े भी, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन जब हम बैठ के आंख बंद करके जब हम अपनी सांस को देखने लगे, हस्तक्षेप ना करें, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी देर आने में लग रहा है, कितनी देर निकलने में लग रहा है, अगर हम एक एक सांस को केवल 5 मिनट अगर इतना कर लेते हैं ना, इससे सरल और इससे अच्छा और इससे लाभकारी कोई ध्यान नहीं है। देखेंगे ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने प्रकार के ध्यान के मार्ग अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला ध्यान है कि आंख बंद करके बैठ जाए और करने का समय क्या है, खाली पेट, नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, रात के भोजन से 1 घंटा पहले, जब भी आपके पास समय है, तीनों में से तीनों समय कर सकते हैं 5-5 मिनट, एक भी समय तो जरूर करना चाहिए। तो बैठ करके सबसे पहले अपने आंख बंद करके अपने शरीर को देखिए कि मैं कैसे बैठी हूँ, एकदम शांत मन से, उस समय सब चिंता छोड़ दीजिए, मेरा काम क्या हुआ, क्या होना है, ना पीछे जाइए ना आगे का सोचिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, हर समय जब भी हम आंख बंद करते हैं तो विचारों का जो उधेड़ बुन है वो तो चलती ही रहती है, तो उस उधेड़ बुन को सबसे पहले तो हमारी बहनों को कंट्रोल करना है, या एक आम इंसान के रूप में भी जब हम बात करें तो उसको तो हमें पहले कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी क्या कुछ पहले हमें सोचना पड़ेगा या उसका कुछ अभ्यास करना पड़ेगा?
0: कि इस फील्ड में मुझे 45 साल से ज्यादा हो गया कराते हुए, दुनिया में सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती
1: जी। और जब हम मन पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं तब
0: तो भाई मन, लोग कहते हैं कि मन भी तो नहीं एकाग्र होता है, शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी शाणुत मापनोति तत्व वायु निरोधेत। कैसे मन को एकाग्र किया जाए, न कोई दुनिया में सर्जरी है न कोई दवाई है, कि अगर श्वास को आप देखना शुरू कर दीजिए रोज रोज तो आपका मन भटकना ही बंद हो जाएगा
1: जी।
0: और करके देखिए तो जैसे जैसे मन पर विजय प्राप्त होने लगे, पहले अगर 1 मिनट में 100 जगह जाता है तो 50 बार जाएगा, फिर 25 बार जाएगा, फिर 10 बार करते करते शून्य हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा बच्चे की तरह।
1: यानी जैसे जैसे हमारी बहनें अभ्यास करेंगी तो अभ्यास के बाद जो है वो अपने सांसों को आते जाते बिल्कुल ध्यान से देख पाएंगी, कैसे सांस जा रही है, कैसे आ रही है, वो जो उधेड़ बुन उनके पहले दिमाग में रहती थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी,
0: खत्म हो जाएगी। और सारी बीमारियों का जड़, आज जितना भी तनाव है, किसी डायबिटीज है, किसी को सिर दर्द है, महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं तनाव के कारण। और तनाव को दूर करने का दुनिया में अगर कोई रास्ता है तो ये ध्यान है
1: जी,
0: प्राणायाम है। तो इस श्वास को ही अगर देखना शुरू करें, उसके बाद ये लेट के भी करें, बैठ के नहीं बैठा जाता, कई लोगों से कमर में दर्द है या कोई थका हुआ है या बीमार है, ताकत नहीं बैठने की, तो वो लेट जाए और लेट करके शरीर को ढीला छोड़ के आंख बंद करें, बंद करके भी अपने शरीर को देखें, फिर श्वास को देखें
1: जी।
0: और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि वाकई मन शांत हुआ, और उसे केवल मन नहीं शांत होगा, सिर दर्द कब दूर हो गया, अनिद्रा की बीमारी, गुस्से, चिड़चिड़ापन, नकारात्मकता, और भी बीमारियां, पाचन की बीमारियां, सब धीरे धीरे केवल इससे दूर हो जाएगा
1: जी।
0: तो ये अभ्यास करें। और उसके बाद ध्यान के साथ साथ कहते हैं 3 तरह का ध्यान होना है, शरीर का ध्यान, पहले शरीर को शिथिल करिए बैठ के चल लेट के, फिर उसके बाद मन को करिए श्वास के द्वारा, इसके बाद कोई विचार नहीं आना चाहिए, जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो

0: चप्पल को बिस्तर पर नहीं अलाउ करते, उसी तरह से बोलिए ध्यान करते समय कि मेरा समय है, विचारों को प्रणाम कीजिए नम्रता से
1: जी।
0: तो उस तरह से थॉट को, विचारों को ध्यान के समय बोलिए कि थोड़ी देर के बाद मैं मिलूंगी, सारे काम बाकी हैं, उपला भी पातना है, पशुओं को चारा भी देना है, खेती में भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, कुछ भी हो सकता है, बोलिए कि लेकिन ये मेरा 5 मिनट है ना, ये मेरा समय है, चाहे 15 मिनट, रोज एक टाइम अपना निकालिए, ना पति के लिए, ना बच्चे के लिए, ना परिवार के लिए, ना दुनिया के लिए, 5 से 15 मिनट अपना समय निकालिए 24 घंटे में से, और उसमें केवल प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और रिलैक्स करके विचारों पर ध्यान कीजिए कि विचार नहीं आना चाहिए, तो उसका क्या लाभ होगा कि धीरे धीरे इतना नियंत्रण हो जाएगा कि जब चाहेंगे तभी गुस्सा आएगा, तो फिर गुस्सा ही नहीं आएगा तो समझिए कि अनेक बीमारियां दूर, तनाव ही कहते नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन, तो इससे क्या होगा, संतुष्टि का अभाव होगा ध्यान करने से। कैसे लाभ होगा स्वास्थ्य पर, कि केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है नैतिक स्वास्थ्य, कि हम अपनी नजर में हम ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन अगर नैतिक पतन हमारा हो चुका है तो हम अपनी नजर में भी नहीं उत्थान कर पाते, लेकिन ध्यान करने से, प्राणायाम करने से आत्म दृष्टि में हम ऊंचा उठते हैं, तो नैतिक उत्थान, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अध्यात्म का मतलब होता है अपनी धी कहते हैं विद्या को, आत्मबुद्धि को हम शोधित कर सकते हैं, अपनी कमियों को हम देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वो ध्यान से सबसे बड़ी बात आती है
1: जी। और योग और ध्यान में जब हम बात करें तो ऐसा भी कर सकते हैं हमारे कि एक दिन योग कर लें, एक दिन ध्यान, या ध्यान ज्यादा इफेक्टिव है योग के बजाय?
0: वो एक दूसरे का भाग है, जैसे भोजन है, सब्जी का अलग भूमिका है, रोटी की अलग भूमिका है, फल की अलग है, तो अगर हम आसन करके और ध्यान करें तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे गांव के लोग की भाषा में दही को जब मथते हैं, दूध को जब खूब मथते हैं तब घी
1: मट्ठा निकलता,
0: बिना मथे जो है बाहर नहीं आएगा। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, जब शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है तो शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, गंदगियां हैं, वो इकट्ठे हो जाती हैं, तब उसको फेफड़ा को निकाल के बाहर करने में, किडनी को निकाल के यूरिन से बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। अगर नहीं हम करते हैं, सीधा ध्यान करते हैं तो भी निकलेगा, लेकिन अगर आसन की बात करें तो ज्यादा लाभ होगा।
1: तो मैं तो यही सलाह दूंगी अपने बहनों को कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको बहुत ही ध्यान रखना है, योग और ध्यान से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारी बहनों ने बातचीत सुनी योग और प्राकृतिक ध्यान से कैसे आप महिलाएं अपना समग्र स्वास्थ्य बना सकती हैं, और उन्हें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सत्यनारायण यादव और बातचीत कर रही थी हमारी बहन कमलेश मुदगल। तो चलो अब हम अपनी बहनों को एक अच्छा गीत सुनवाते हैं कि भाई
3: हाँ, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि भाई योग से क्या क्या फायदे हो जाते हैं।
2: फायदे भी होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर खूबसूरती होती है तो अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो मन में अच्छा भी लगता है।

0: तो हम आज जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, जैसे कि कार्यक्रम आप जानते ही हैं गृहलक्ष्मी, और हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं, बहुत सारे खास मुद्दों पे बातें भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, खास बातें भी बताते हैं। और उसके साथ हम बताएंगे कि हमारी किसान भाइयों के लिए, किसान बहनों के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हमारा ऑयल सीड्स किसान मित्र, इसके जरिए एक वर्चुअल कृषि विस्तार से होगी, एक ये विकसित योजना कह लो, उसका उद्देश्य क्या है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और किसान समुदाय के बीच की जो दूरी होती है ना, उनको कम करना, एक स्मार्ट खेती की जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी सलाह उन्हें मोबाइल के जरिए तुरंत उपलब्ध हो जाए, और इसका उद्देश्य ही यही है कि उन किसानों की जो उनकी जो सरल भाषा है उसमें समय पर और उपयोगी कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो बेहतर और तरीके से और वैज्ञानिक खेती को कैसे बढ़ावा मिले उनको अच्छे से मिल पाए।
1: बिल्कुल। और देखो इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जैसे अभी हमने बताया कि जो ये जो ग्रामीण बहनें हैं हमारी हर तरह से खेती के लिए भी अच्छी तरह से जानकारी ले सकती हैं, उसी तरह से जो हमारी भारतीय ग्रामीण बहनें हैं उनका खेलों में भी दबदबा इतना रहा है कि नकारा नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल।
1: अब जहां तक देखो खेल की मिट्टी में, जब गांव की मिट्टी में हमारी बहनें खेलती हैं ना, तो एक अलग ही हुनर और रंग निखर कर आता है, और उसके बाद फिर जिस तरह से वो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं उसका तो कहना ही क्या।
0: और अभी जैसे चल रहा है ये जापान के आईची नागोया में चल रही है एशियन गेम्स है ना, उसमें भी हमारी जो भारतीय महिलाएं उनकी खास भूमिका रही है, और उन्होंने ऐसे इतिहास रच दिया है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको एक कहते हैं ना कि उसपे प्रेरित हो रही है।
1: बिल्कुल। देखो रेनो, जो एशियाड है, अभी हमारी जो महिला क्रिकेट टीम ने एशियन खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिला, एक बहुत बड़ी बात होती है, और हमारी बेटियों के लिए भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उस बात के लिए भी देखो बेटी बचाओगे तभी तो बेटी
0: नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ माता पिता ही नाम रोशन नहीं करते हैं, देखो पूरे देश का नाम रोशन होता है। तो जैसे हमारी क्रिकेट में हो, कबड्डी में हो, या शूटिंग में हो, या कहीं हमारे किसी भी एथलीट की बात की जाए, तो बहुत सी महिलाएं जिन्होंने अपना योगदान दिया।
1: बिल्कुल। देखो जैसे मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर, बर्निका एलंगोवन, और भारतीय एथलीट में सुचिका तरियाल, और इसी तरह से राइजा ढिल्लो, माहेश्वरी चौहान, परिणाश थालीवाल, सीमा कुमारी, इन सभी जो बेटियां हैं हमारी, हमारे अपने परिवार का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, और इसके साथ साथ विश्व में भारत की खेलों के जो दृष्टिकोण से एक नई

0: हाँ, तो भाई हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें जानकारी तो मिल ही रही है, और हर
1: बिल्कुल
0: बार इनको ये भी पता है, हमारे श्रोता बहुत ही समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि हम महीने के जो आखिरी रविवार होता है उसमें होती है मन की बात, जिसमें
1: बिल्कुल
0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सी बातों को संकेत बताते हैं, और जिसमें कि आज उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो हमारा ध्यान आकर्षित किया वो
1: बिल्कुल
0: है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए भारतीय सैनिकों की बहादुरी की सराहना की।
1: बिल्कुल। और देखो, इसके साथ ही रेनू, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमसे साझा की है, जनगणना की। हम सभी
0: बिल्कुल।

0: मांगते हैं, तो उन्होंने बताई है कि सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी डिजिटल तरीके से भी पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा की जा सकती है। और इसके लिए जो इस तरफ आगे बढ़ते हैं वो उनके बारे में बताते भी हैं, जैसे हरदेव राणा जी के बारे में उन्होंने बताया कि भाई जो सभी लोग हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारा कर्तव्य बनता है, और अगर हम जनगणना पोर्टल पर समय से अपनी जानकारी साझा कर देंगे तो हम सभी के लिए भी ये अच्छी बात होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी हमारे हितकर की ही बातें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर जो निर्णायक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ साथ खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा।
0: बिल्कुल, और इसी तरह से उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के बारे में भी बताया कि जो हमारे युवा हैं जब वो नशे को छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारा देश है वो अपने आप ही विकसित होगा और आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जब इंसान नशा करता है तो उस समय उसे कुछ नहीं सोचता, वहीं नशा मुक्त होने पर हर इंसान अपने तरीके से रचनात्मक बातों को जान सकता है, सोच सकता है।
1: बिल्कुल, और इसी बात पर हम कहते हैं ना कि नागरिकों की सराहना की, जहां जहां स्वच्छता को लेकर और पर्यावरण को लेकर एक विकास हुआ है, जहां चेतना उजागर हुई है कह लो, तो मतलब स्वच्छता तो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर स्वच्छ रहेंगे, आसपास हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ भी रहेगा।
0: बिल्कुल, और यू नो इसके साथ साथ उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर भी बल दिया, जो कि जो हमारी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगी, क्योंकि जो हमारे माननीय मोदी जी हैं वो बहनों की सराहना भी करते हैं। जब वो छोटे छोटे मतलब कामों से अपने उद्योग को बढ़ावा देती हैं और कुछ ना कुछ राशि अपने घर के लिए लेकर आती हैं, तो देखो परिवार में भी एक तरह से वो मिलता है सहयोग, और इसके साथ साथ जो हमारा देश है वो भी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से आगे
1: बढ़ता है। और इसी तरह से कुपोषण मुक्त भारत की जो पहल है वो होनी चाहिए, तो इस पर भी जोर दिया है।
0: बिल्कुल, और इसी तरह से उन्होंने जो हमारे देश में उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे अभी अभी हम गणपति उत्सव मना कर चुके हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो सारे उत्सव हैं और देश को बढ़ाने के लिए जो जो कार्य किए जा रहे हैं वो एक तरह से सब में एकजुटता और अनुशासन लेकर
1: आते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से मन की बात में बहुत सारी जानकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें किसी बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया, और इसी पर हम सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: और वीरांगना क्रम में हम अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई ऐसी वीरांगना अवश्य लेकर आते हैं जो कि प्रेरणा देती है और साथ साथ ही कुछ ना कुछ हमें भी करने के लिए प्रेरित
1: करते
0: हैं।
1: हैं, बिल्कुल।
0: तो रेनू, आज हम अपनी बहनों के लिए ऐसी ही एक प्रेरणा जो वीरांगना है वो लेकर आए हैं। और ये जो वीरांगना है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय नहीं थी, मगर भारतीय ना होकर भी पूरी तरह से भारतीयता के रंग में ढल गई थी।
1: बिल्कुल,
0: ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गहरा संदेश है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है रेनू, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं कि जो जो विदेशी लोग होते हैं वो भी जब यहाँ आ जाते हैं तो उसके रंग में ऐसे ढल जाते हैं कि पूरी तरह से वो भारतीयता को ही अपना लेते हैं। और
1: बिल्कुल।
0: हमारी बहनें समझ ही गई होंगी,
1: तो आज
0: हम
1: किसको लेकर आए?
0: बिल्कुल आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर एनी बेसेंट को। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी और जो इनका दिल था वो पूरी
1: पूरे
0: तरह
1: तरह से
0: से
1: भारतीय।
0: भारतीय था। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और महिला अधिकारों की समर्थक और उसके साथ साथ हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही प्रमुख नेता रही।
1: बिल्कुल। और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में, इंग्लैंड में, एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि वहां हुआ जन्म, लेकिन फिर भी जो भावनाएं हैं हमारे भारत से, हमारे भारत की मिट्टी से जुड़ी। और 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे धार्मिक राजनीतिक मतभेदों के कारण उनका अलगाव भी हो गया। और ब्रिटेन में सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत किया। अलगाव के बाद भी ब्रिटेन में विचार की स्वतंत्रता थी, महिला अधिकार था, जन्म नियंत्रण था, तो उस पर भी उन्होंने एक प्रखर वक्ता के रूप में
0: बिल्कुल
1: भी उन्होंने
0: बिल्कुल।
1: काम किया।
0: और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। तो जो हमारी बहनें हैं इनसे शिक्षा ले सकती हैं कि
1: बिल्कुल।
0: जो शिक्षा है और जो अपने समाज के लिए कार्य करना है वो हर महिला के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महिला की प्रगति के लिए भी ये बहुत ही
1: बहुत जरूरी
0: आवश्यक
1: है।
0: है।
1: और कहा, ये जब इन्होंने भारत आई तो उनके ना होम रूल लीग
0: बिल्कुल
1: आंदोलन, उनमें उन्होंने उनकी शुरुआत की। और कांग्रेस की अध्यक्षता, कहते हैं
0: बिल्कुल
1: कि उनके राष्ट्रवादी कार्यों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नजरबंद भी नहीं किया गया। और उनकी लोकप्रियता देखते हुए उन्हें कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष भी
0: बिल्कुल।
1: बनाया गया।
0: तो देखो, हम अपनी बहनों को यही कहेंगे कि जो ऐसी महान प्रेरणा व्यक्तित्व रही वो उनको हम शत शत नमन करते
1: नमन
0: हैं और
1: करते
0: साथ ही
1: हैं।
0: प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी उनके जो दिखाए पदचिन्ह थे उन पर
1: हाँ,
0: चलना
1: चलना
0: चाहिए।
1: चाहिए।

0: तो समय की घड़ी कह रही है कि हमें जाना होगा, लेकिन हम बता दें कि हमारे जो श्रोता हैं वो शाम को कृषि से संबंधित प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे तो सुनेंगे। 5:10 पर लोक रंजनी रहेगा, 6:30 सुन सकेंगे ग्राम संसार, और 7:05 पर होगा कृषि जगत। और इसी के कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप बहुमूल्य सुझाव हमें इस पते पर दे सकते हैं। पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001। और हमें ईमेल के जरिए भी आप हमें जुड़ सकते हैं, feedback@fnh.gmail.com।
1: देखो मन तो नहीं चाह रहा, लेकिन घड़ी की सो इशारा कर रही है कि अब हम अपनी बहनों को बोलें कि आज का हमारा यह गृहलक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम के हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और इसी के साथ बहनों, राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की

0: गांधी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्म भूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient and people can register information about themselves and their families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes.

उसके पिता राय साहब रघु प्रसाद अपनी बेटी की शादी कैलाश से तय कर देते हैं। कैलाश का किरदार निभाया है प्रेम चोपड़ा ने। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। शील की मुलाकात होती है राजेश से। राजेश की भूमिका में है विश्वजीत। तो आगे क्या होता है आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। उससे पहले सुन लेते हैं फिल्म सगाई का एक खूबसूरत सा गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने।

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म सगाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे शील और राजेश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके बीच प्रेम का रिश्ता बन जाता है। शील कैलाश से शादी नहीं करना चाहती, वो राजेश से शादी करना चाहती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां परिवार की इच्छा और दिल की इच्छा आमने सामने खड़ी दिखाई देती है, और फिर आता है शील का जन्मदिन, और इसी मौके पर शील और राजेश अपनी सगाई का जश्न मनाते हैं। आगे क्या हुआ ये जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: पापे ना शर्मा
1: इस खूबसूरत गीत के बाद अब वापस लौटते हैं फिल्म सगाई की कहानी की ओर। राजेश और शील की सगाई को कैलाश स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में राजेश के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाती है और फिर एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट एक साजिश थी राजेश के खिलाफ। इस एक्सीडेंट में राजेश कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो जाता है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ एक युवा प्रेमी जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई, दूसरी तरफ एक लड़की जिसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने प्रेमी का साथ देगी? शील के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन शील ने राजेश का साथ नहीं छोड़ा। शील ने राजेश के साथ विवाह कर लिया। यहां फिल्म का शीर्षक सगाई जैसे एक नए अर्थ में बदल जाता है। सगाई सिर्फ दो लोगों के बीच किया गया वादा नहीं रह जाती, वो जीवन भर साथ निभाने के संकल्प में बदल जाती है। फिल्म की कहानी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ!
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के एक ही फिल्म से प्रोग्राम में, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। और आज आप सुन रहे हैं फिल्म सगाई की कहानी के साथ साथ उसके नगमे भी। तो आइए सुनते हैं एक और भावनात्मक गीत फिल्म सगाई से।

दोस्तों, इस भावनात्मक गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शादी के बाद शील अपने लकवाग्रस्त पति की सेवा में लग जाती है और अपने पति को फिर से जीवन के प्रति विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती, एक ऐसी स्त्री की कहानी बन जाती है जो कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानती। कहानी का भावनात्मक केंद्र यही है कि जब जीवन आसान नहीं रहता, तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। राजेश के लिए शील का साथ सिर्फ प्रेम नहीं है, वो अब उसके जीवन का सहारा बन जाती है। तो ये थी फिल्म सगाई की कहानी संक्षेप में। तो अभी हमारे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा अपने संदेशों का, तो अभी हम अपने दोस्तों के संदेश शामिल कर लेते हैं। तो पहला संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम दिशानी और निमित अहुजा ने हमें ये संदेश भेजा है। इन्होंने लिखा है, एक ही फिल्म सगाई की कहानी और गीत सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, और इनके साथ हैं, अगला मेल है हमें झग्गर राम साहू, ये हमें मेल भेजा है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और अगला संदेश है संजय धिंगिया जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये संदेश हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से। तो अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं फारूक अली जी का, इनको भी हमारा प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है पीएस नावकर जी का, ये संदेश इन्होंने भेजा है नरवेल महाराष्ट्र से, और इनके साथ हैं नावकर परिवार के सभी सदस्य, इनको भी आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं सुदर्शन मुखी जी का, ये मेल हमें, इनके साथ है अनीता सिमरन, ये मेल हमें मिला है शांति नगर सोनीपत से, इनको भी आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, एक ही फिल्म से कार्यक्रम का ये आनंद उठा रहे हैं और फिल्म के गीत भी इन्हें पसंद आ रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगला मेल है हीरामणि वर्मा जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इन्होंने लिखा है आज फिल्म सगाई, फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ फिल्म के बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। तो आपका भी हीरामणि जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है दंत रेगी भट्टापारा से। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूँगा।

0: रोजी डी कास्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने ये मेल हमें भेजा है और ये हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत ही आनंद के साथ सुन रहे हैं। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और एक और मेल शामिल करूंगी मैं, कमलकांत गुप्ता जी ने ये मेल भेजा है पीपरिया से और इनके साथ है दीपा गुप्ता और छिपा गुप्ता, छिपा गुप्ता। तो इसी तरह से हमें अपने संदेशों के जरिए अपना प्रेम जाहिर करते रहिए और प्रोग्राम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी हमें भेजते रहिए। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो नए श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ईमेल पता मैं बताना चाहूँगी, ipradiodelhi@gmail.com। तो दोस्तों, फिल्म सगाई में कई अनुभवी कलाकार भी दिखाई देते हैं। राज मेहरा शील के पिता की भूमिका में हैं, दुर्गा खोटे शील की माँ के रूप में, असित सेन टुनटुन इफ्तिकार अस्पताल की डॉक्टर की भूमिका में और हेलन डांसर के रूप में दिखाई देती हैं। इन कलाकारों ने फिल्म की कहानी को अलग-अलग रंग दिए। दोस्तों, फिल्म की एक खास बात है शील का विष कन्या के रूप में किया गया नृत्य। ये दृश्य फिल्म की कहानी में आने वाले तूफान से पहले का एक अलग रंग प्रस्तुत करता है। राजश्री का नृत्य और उस समय की सिनेमाई प्रस्तुति हमें उस दौर की फिल्मों की शैली की याद दिलाती है। दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ खुशियों के साथ रहने से नहीं बनते, रिश्ते तो मुश्किल समय में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं होती, मुश्किल घड़ी में जो साथ थामे वही तो सच्ची सगाई होती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म सगाई का एक और प्यारा सा गीत।
1: खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न।

दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी में एक और बात आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी कि टुनटुन ने मिस अनारकली की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। यानी फिल्म में गंभीर प्रेम कहानी के साथ हल्के फुल्के हास्य का भी रंग मौजूद था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक और फिल्म की कहानी के साथ। और इसी के साथ नमस्कार, और चलते चलते सुनते जाइए इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया दे सामने भारत दी दहशतगर्द विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल पेश कीती है। प्रधानमंत्री वालों नौजवानां नूं नशा मुक्त युवा मुहिम दा हिस्सा बनन दी अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख विच जंग दी प्रकृति दी नूं ध्यान च रखते हुए अपनियां समर्थावां दा विकास कर रहा है। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है ते भारत ते वैस्ट इंडीज दरमियान 3 एक रोजा क्रिकेट मैचां दी लड़ी अज तो शुरू। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवनंतपुरम च खेडिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया दे सामने भारत दी दहशतगर्दी विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल पेश कीती है। आज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च उन्होंने कहा कि देश कल 28 सितंबर नूं इस स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देख के हैरान है कि किवें बहादुर भारतीय जवानों ने दहशतगर्दी खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने लई कंट्रोल रेखा पार की। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय तो दहशतगर्दी हमलों तो पीड़ित सी अते सर्जिकल स्ट्राइक इसका फैसला कुन जवाब सी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके दौरान बालाकोट हवाई हमले तो लैके ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने वार वार यह संदेश दिता है कि दहशतगर्दी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे

0: से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वजीर आजम ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वजीर आजम बनने के बाद अमरीका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तस्करा भी किया। मौजूदा मरदम शुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज्यादा कुंभों का डेटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मरदम शुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी जिसे वो मरदम शुमारी करने वाले इन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां योम पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशावर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है।
0: आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मरतबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने बाइसे तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहें। वजीर आजम ने कहा कि मन की बात के जरिए इन कोशिशों के बारे में सीखने से मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी तरगीब मिलती है। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने ये उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने अजीज व अकारिब के साथ आने वाले त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निज़ाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए अगले 10, 20, 25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही।
2: आज का युद्ध केवल सैनिक बनाम सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है।
1: آج پوری دنیا میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے

0: now on October 6th, followed by the second T20I in Ranchi on October 9th. India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nayoga today, with the men's and women's compound teams advancing to the semifinals along with the recurve. India today clinched two silver medals in squash. India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's EON 11-9-11-5-11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's single squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindhu demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued of Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल

0: से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
0: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेन्द्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल

0: तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
1: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
2: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि

0: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं मोहब्बत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है, उसकी खामोशी सुनी जा सकती है और कभी कभी उसे पर्दे पर देखा भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी फिल्मकार ने मोहब्बत को एक खूबसूरत दृश्य, एक कविता और एक गीत और एक एहसास बना दिया, तो वो नाम था यश चोपड़ा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे आज के कलाकार हैं यश चोपड़ा। हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार का नाम जिनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ कहानी नहीं था बल्कि एक पूरा संसार था। सरसों के खेत, उड़ती हुई शिफॉन की साड़ियां, बारिश में भीगते प्रेमी, ट्रेन की खिड़की से दिखाई देता इंतजार और उन सब के बीच एक अधूरी सी मोहब्बत। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उस शख्सियत को जिसने भारतीय सिनेमा की रोमांटिक भाषा ही बदल दी। तो आज बात करेंगे हम यश चोपड़ा की।

साथियों, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। 27 सितंबर 1932 लाहौर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे शायद उस समय खुद भी नहीं मालूम था कि आने वाले वर्षों में वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना एक अलग अध्याय लिखने वाला है। यश चोपड़ा का बचपन साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सिनेमा उन्हें आकर्षित करता था और यही आकर्षण उन्हें मुंबई तक ले आया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में शुरुआत एक निर्देशक के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। लेकिन यश चोपड़ा सिर्फ फिल्में बनाने वाले निर्देशक नहीं थे, वो भावनाओं को समझने वाले फिल्मकार थे। उन्हें पता था कि दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देखता, वो कहानी में खुद को ढूंढता है। यश चोपड़ा अपने बड़े भाई बी आर चोपड़ा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियां भी सीखी और आया वर्ष 1959। फिल्म थी धूल का फूल। ये उनकी निर्देशन यात्रा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसके बाद आई कई फिल्में जैसे धर्मपुत्र, वक्त, इत्तेफाक। हर फिल्म के साथ यश चोपड़ा की अपनी सिनेमाई पहचान मजबूत होती गई, खासकर वक्त, जिसने उन्हें एक बड़े फिल्मकार के रूप में स्थापित किया, जहां एक परिवार, समय का तूफान, बिछड़ना और फिर वर्षों बाद मिलना। यश चोपड़ा जानते थे कि बड़े पर्दे पर भावनाओं को कैसे प्रभावशाली बनाया जाता है।

साथियों, ये मधुर से गीत और संगीत आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन पसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से। और आज आपकी दोस्त है आपके साथ तृप्ति जौहरी, और कार्यक्रम चल रहा है वही एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा जी के बारे में। तो साथियों, यश चोपड़ा की असली पहचान अभी बननी बाकी थी, वो पहचान जो आगे चलकर उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा रोमांटिक फिल्मकार बनाएगी। साल था 1973। यश चोपड़ा अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी की शुरुआत करने वाले थे, और शुरुआत की भी उन्होंने आई यशराज फिल्म्स, और इसी बैनर के तहत आई फिल्म दाग ए पोएम ऑफ लव। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी जैसे कलाकार थे। यहीं से यश चोपड़ा की अपनी रचनात्मक दुनिया का विस्तार हुआ। उनकी फिल्म में प्रेम था, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं था, रिश्तों की जटिलता थी, समाज था, संघर्ष था, और इंसान के भीतर चलने वाली भावनाएं थीं। फिर आया साल 1976, फिल्म कभी कभी, अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, राखी और अमिताभ की प्रेम कहानी। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात थी शब्द। जी हाँ, शब्द साहिर लुधियानवी की।

विताएं और यश चोपड़ा की सिनेमाई दृष्टि। ऐसा लगा जैसे कविता स्क्रीन पर चल रही हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर प्यार को कोई आवाज दी जाए तो शायद वो आवाज कुछ ऐसी ही होगी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। यश चोपड़ा की फिल्म में गीत कहानी से अलग नहीं होते थे, गीत कहानी का हिस्सा होते थे, और यही वजह थी कि उनके सिनेमा में संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता था, महसूस होता था। जी हाँ, यश चोपड़ा को सिर्फ रोमांस का फिल्मकार समझना उनकी

प्रतिभा को छोटा करना होगा। उन्होंने गंभीर सामाजिक और एक्शन ड्रामा भी बनाए। अगर हम बात करें फिल्म दीवार की, जिसने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन दौर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आई फिल्म त्रिशूल, उसके बाद काला पत्थर, यानी एक तरफ प्रेम और भावनाएं तो दूसरी तरफ संघर्ष, व्यवस्था और इंसान की लड़ाई। यश चोपड़ा की यही विविधता उन्हें अलग बनाती थी। फिर आया वर्ष 1981, जब आई फिल्म सिलसिला। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, विवाह, आकर्षण और सामाजिक मर्यादाओं के बीच इंसान की भावनाओं को दिखाया गया। फिल्म अपने समय से आगे की कहानी कही गई और आज भी सिलसिला का नाम आते ही हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित रिश्तों और प्रेम कहानियों में इसकी चर्चा होती है। यश चोपड़ा की खासियत थी, वो रिश्तों को सिर्फ सही या गलत के खाँचे में नहीं रखते थे, वो उनके भीतर छिपे दर्द और द्वंद को दिखाते भी थे।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।

0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा के बारे में। तो यश चोपड़ा ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में बनाई, जिसमें चांदनी, डर, दिल तो पागल है और वीर जारा जैसी फिल्में बनाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यश चोपड़ा की फिल्मों में ऐसा क्या था जो दशकों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। शायद इसका जवाब उनकी फिल्मों की उस दुनिया में है, जहां प्रेम को सिर्फ संवादों में नहीं, दृश्यों में भी दिखाया जाता था। उनकी फिल्मों में संगीत का विशेष स्थान था। गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे, कपड़े भी कहानी का हिस्सा बन जाते थे, लोकेशन भी कहानी का हिस्सा बन जाती थी और सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं कहानी का केंद्र होती थी। यश चोपड़ा ने हिंदी फिल्मों के रोमांस को भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया के खूबसूरत लोकेशनों तक पहुंचाया। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां हो, लंदन की सड़कें हो या भारत के पहाड़ और खेत, उनकी फिल्म में हर जगह एक खास रोमांटिक एहसास दिखाई देता था। यश चोपड़ा की सिनेमा की चर्चा संगीत के बिना अधूरी है। उन्होंने अलग अलग दौर के महान संगीतकारों और गीतकारों के साथ काम किया, जैसे साहिर लुधियानवी, हयाम शिवहरी, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा की जोड़ी, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी और बाद के दौर में कई अन्य प्रतिभाशाली संगीतकार और गीतकार। यश चोपड़ा समझते थे कि एक अच्छा गीत फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के साथ रह सकता है, और यही हुआ भी। उनकी फिल्म के गीत आज भी रेडियो पर बजते हैं तो लोग उन्हें गुनगुनाते हैं और पुरानी यादें लौट आती हैं।

साथियों, इसी के साथ कुछ हम नाम शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में। जैसा कि प्रोग्राम का दस्तूर है, कुछ हमारे साथी जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में, तो रोजी डिकैस्ट्रो, ताज मोहम्मद, प्रकाश वर्मा, पीएस नाहवकर, पंकज शर्मा, सुदर्शन मुखी, दिग्दर्शन गौड़, संजय ढींगिया, राजकुमार डूडी और धर्मेंद्र छिपा, और इनके साथ रवि कुमार, राहुल आर कुमार, हरजिंदर शिंदा, मसूर हसन, फरगुन यादव, फारूक अली खान, शेख जियाउर रहमान, के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य, बाबू शिवा, प्रवीण हगोने, रवि कुमार, राहुल, और आपने भी मेल कई बार भेजी है, तो आप सभी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और आपने अपने संदेश हमें भेजे हैं कार्यक्रम से संबंध में। तो इसी तरह जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। आनंद लीजिए इस गीत का।

साथियों, ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप थे अपनी दोस्त तृप्ति चौरी के साथ। तो आज के कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त तृप्ति चौरी को अनुमति, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी,
0: हाँ
1: देखो आश्विन माह कल तिल लग गयो है और ब्रज में ब्रजवासी सवेरे सवेरे कुंड सरोवर में स्नान करके अपने पितरन को श्राद्ध करे हैं।
0: हाँ बहना, और बहना पता है पितृ पक्ष में पंच बलि कर्म को बहुत महत्व हुए।
1: हाँ सखी,
0: मतलब भोजन के पांच हिस्से करके देवता चीटी कौआ गाय और कुकर को ग्रास निकालियो जाए तो पितृ पक्ष की परंपरा हो सखी प्रकृति ते जुड़ी भई है।
1: हाँ सखी, और मंदिर में सांझी कला को प्रदर्शन हुए, पर इन दिनान में धूप में इतनी गर्मी हुए क्या लोग बाग बीमार पड़ जामे।
0: हाँ तो आपको एक उपाय है ना कि जब भी घर से निकलो तो सिर पे छाता या साफा रखना चाहिए। वैसे वो जब बादल छट जामे ना बेना तो धूप की तेजी अधिक लगे।
1: और अपने स्वास्थ्य को सही रखवे की काज है तले भुने खाद्य पदार्थन को छोड़ के हल्को सुपाच्य भोजन हो करना चाहिए ना। पर देखो सखी, मौसम को कछु पतो ना, कभू तो बड़ी गर्मी है जाए और कभू देखो ठंडो मौसम है जाए, और आजकल तुम देख ही रही हो कैसो अदल बदल रहे हो मौसम।
0: सही बात कह रही हो बहना, जब बादल है जाए तो धूप की तेजी कम है जाए और जब बादल छट जाए तो धूप तेज है जाए, और बहना धूप की तेजी के कारण पित्त बढ़ जाए तो बढ़े पित्त को शांत करवे के काजे कसैले कड़वे और मीठे खाद्य पदार्थन को सेवन जरूर करना चाहिए।
1: हाँ सखी, जैसे करेला तोरई लौकी कद्दू ये सभी पित्त को शांत करे हैं। और ज्यों कहो जाए कि इन दिनान में दिन में सोए बेते कफ और पित्त दोष बढ़ जाए।
0: हाँ बहना, आयुर्वेद जो है वो ऋतु के अनुसार चले और ऋतुओं को आधार है सूर्य की गति। आजकल जो समय है ना बहना वाकु विसर्ग काल कहो जाए, जब शरीर दुर्बल है जाए याइते या समय मिलवे वारे खाद्य पदार्थन को सेवन बतायो गयो है।
1: सखी आजकल कहो जाए है कि दूध मिश्री मिश्रित लेना चाहिए और पुरानो अनाज खाना चाहिए, जैसे पुराना चावल जो ठंडक प्रदान करे।
0: हाँ, और थोड़ी देर चांदनी में हूँ जरूर टहलना चाहिए।
1: हाँ सखी, इन दिनान में चांद की शीतलता बड़ी सुहानी लगे और शरद पूनो पे तो या शीतलता को अमृत बताया है।
0: हाँ सखी, याई ते तो पूनो पे खीर को चांद की शीतलता में रखियो जाए, और बहना आजकल ब्रज की कुंजन में खिले चंपा बेला के पुष्प चांदनी ते अटखेली करत भाई।

0: सुंदरता बिखेरे हैं, और इन रातन में रासलीला देखने को जो आनंद है वो कछु और ही होए।
1: इन सघन लतन में विचरना सचमुच ही आनंददायक होए। सुनो तो यह प्यारे से लोकगीत में जाकू स्वर दियो है मदन मोहन ब्रजवासी ने।
0: ठीक।

0: प्रेम अमन श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मैं ना प्रेम वाटिका के दो युगल वर प्रेम को चरम है। कृष्ण भक्त कवि श्री रसखान ने जो प्रेम को वर्णन किया है वो ब्रज साहित्य की शोभा है। बिनन ने अपनी रचनान में सहज सरल और प्रभावी ब्रज भाषा को प्रयोग करके जी साबित कियो हो कि प्रेम हर धर्म ते ऊपर है।
1: हाँ सखी, प्रेम वाटिका की और हूँ रचनाएं प्रेम को वर्णन करें। जैसे दो मन एक होते सुनियो पै वह प्रेम न आही, होई जब दो तनु एक सोई प्रेम कहाई।
0: बहना वियोग में हूँ प्रेम को अद्भुत वर्णन कियो है रसखान ने। वा रस की कछु माधुरी उधो लही सहाही, पावे बहुर मिठास अरु अब दूजो को आही।
1: और सखी रसखान की तरिया रहीम हूँ कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। समाज में नीति प्रेम और व्यवहार की सीख देती रहीम की रचनाएं आज हूँ प्रेरणा दे मैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रही मन हरि को घटियो जो भृगु मारी लात।
0: बिल्कुल बहना, नीति परक दोहेन के संग संग जो रचनाएं बिनन ने गोपी प्रेम की करी है ना वेहू बड़ी विरली हैं, बड़ी मार्मिक हैं। कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नहीं सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी, अनुदिन श्री वृंदावन ब्रजते आवन आवन आनी, अब रहीम चित ते नटरति है सकल श्याम की बानी।
1: सखी रहीम और रसखान दो हमारे ब्रज साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। तो चनाए आज एक वार्ता सुनवाए दें।
0: हाँ सुनवा दियो।
1: हाँ सखी, यह वार्ता का विषय है ब्रज साहित्य में रहीम और रसखान को स्थान। यह वार्ता के वार्ताकार हैं विकास खन्ना।
2: राधे राधे रसिक जन श्रोताओं, ब्रज भाषा में बात जब रहीम और रसखान के स्थान की आवे है तो इन दोनों कविन को केवल भक्तिकालीन मुस्लिम कवि कहनो पर्याप्त ना है। इन दोनों को महत्व ब्रज भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्ति की व्यापकता देवे और वाके भीतर प्रेम भक्ति नीति तथा लोक जीवन की भांति भांति धारान को समृद्ध करवे में है। साहित्य इतिहास में रहीम व रसखान को ब्रज भाषा के प्रमुख कविन में रखो गया है। तो रसिक जन श्रोताओं, बात करें रसखान की, ब्रज भाषा में प्रेम व कृष्ण भक्ति के जा द्वितीय कवि की भाषा में स्वाभाविक प्रवाह माधुर्य चित्रात्मकता और भाव सघनता की प्रचुर अभिव्यक्ति मिले है। रसखान के उपलब्ध साहित्य में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका विशेष महत्व को स्थान रखे हैं। उनके कई ग्रंथन को लेके विद्वानन में विरोधाभास मिले है। रसखान को यह सवैया ब्रज भाषा की सशक्त प्रस्तुति को सुंदर उदाहरण दियो जा सके है। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धैनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या में ब्रज भाषा केवल कृष्ण की स्तुति की भाषा नाए है, ये ब्रज भूमि के संपूर्ण जीवन की भाषा बन जाए है। गोकुल ग्वाल नंद की गौए गोवर्धन यमुना और कदम यही हते रसखान को अद्भुत योगदान। प्रेम वाटिका में प्रेम को दार्शनिक स्वरूप आपे या दोहा छंद के माध्यम से प्रेम को लगभग आध्यात्मिक दर्शन को रूप देखवे में मिले है। प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दुई जानिए ज्यो सूरज अरु धूप। या रचना में ब्रज भाषा में सूफी प्रेम दृष्टि और कृष्ण भक्ति को अद्भुत समन्वय देखवे को मिले है। एक बात विशेष रूप से कही जा सके कि प्रेम वाटिका मूलतः रसखान की प्रेम रूपी साधना को काव्य है। रसखान की भाषा की एक और बड़ी विशेषता चित्रोपमता है। या में कृष्ण को बाल स्वरूप देखवे को मिले है। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, ऐसी बड़ी सिर

सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कट पीरी कचोटी। या में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के बजाय ब्रज के घरेलू लोकप्रिय प्रचलित शब्द आते हैं। याई कारण दृश्य आखन के सामने सजीव है जावे है। याई कारण आलोचनात्मक परंपराऊ रसखान के संवयन में ब्रज भाषा को सहज प्रवाह और दृश्य योजना में उनकी प्रमुख शक्ति माने है। अब बात करें रहीम की। रहीम ब्रज भाषा के नीति और लोक जीवन के महान कवि माने जाए हैं। रहीम को स्थान रसखान से कछु भिन्न है, जहाँ रसखान ने ब्रज भाषाए प्रेम और कृष्ण लीला को माधुर्य दियो, वहीं रहीम ने ब्रज भाषा को नीति व्यवहार और जीवन दर्शन की अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी। रहीम की अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा की हैं। यद्यपि रहीम ने अवधि में भी काव्य रचना की है, साहित्य इतिहास में रहीम ब्रज भाषा के प्रमुख नीति कवियन में गिने जाए हैं। रहीम को प्रसिद्ध दोहा, रहीमन धागा प्रेम को मत तोरी चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, या दोहा में ब्रज भाषा को उपयोग देखिए कि धागा और गांठ जैसे सामान्य शब्दन को माध्यम ते रहीम ने मानवीय संबंधों को गहरो मनोविज्ञान उकेर के रख दियो है। याई तरिया रहीम ने ब्रज भाषा को नीति की भाषा बनाए दीनो। रहीम के दोहे मात्र उपदेश नाए हैं, उनमें लोकानुभव ते निक्सी भई सूक्ति और जीवन बुद्धि है। उदाहरण, रहीमन देखी बड़ेन को लगुना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। या में तलवार और सुई को विरोधाभास लेकर रहीम ने बताया है कि संसार में काई व्यक्ति और वस्तुओं को केवल वाके आकार व भारी महत्व ते नाए आंकनो चाहिए। यही तरिया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के भीतर जल मान सम्मान और जीवन मूल्य कई अर्थ समाये हैं। अर्थात सघनता रही में ब्रज भाषा के नीति काव्य में उनके दोहन की मार्मिकता और लोकप्रियता सिद्ध करे हैं। दोनों ब्रज भाषा के कवियन में महत्वपूर्ण अंतर या प्रकार से देखा जा सके कि भाव पक्षानुसार जहाँ रसखान माधुर्य भक्ति प्रेम विरह प्रकट करे हैं, तो वहीं रहीम नीति प्रेम व्यवहार और लोकानुभव प्रकट करे हैं। शैली की बात करें तो रसखान सवैया कवित्त दोहा को प्रयोग करें और रहीम सिर्फ दोहा शैली में ही लिखे हैं। भाषा की विशेषताओं में अंतर दिखे है, जहां रसखान चित्रात्मक सरस भावपूर्ण भाषा शैली की बात करें हैं, वहीं रहीम सूक्तिपरक संक्षिप्त मार्मिक शैली में बात कह जाएं। जहां ब्रज की बात करें तो रसखान कृष्ण की लीला भूमि के रूप प्रकट करें और वहीं रहीम भारतीय लोक जीवन और नीति की भूमि के रूप में बखान करें। याई काजे रसखान को कृष्ण प्रेम को अद्वितीय ब्रज कवि व रहीम को भारतीय लोक जीवन और नीति को ब्रज कवि कहो जाए है। अतः हम कह सकें कि ब्रज भाषा के विकास में जहां ब्रज भाषा को वात्सल्य और माधुर्य दियो, वहीं रसखान ने उसी ब्रज भाषा को अनन्य कृष्ण प्रेम और ब्रज अनुराग दियो और रहीम ने वहीं ब्रज भाषा को नीति सामाजिक व्यवहार और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति बनाए दियो। या दृष्टि ते रसखान और रहीम ब्रज भाषा के क्षेत्र विस्तारक कवि हते। याई प्रकार ते ब्रज भाषा के विकास में दोनों कविन को संयुक्त महत्व हते। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, ब्रज भाषा केवल कृष्ण भक्ति की भाषा बनकर नाय रह गई। जहाँ सूरदास जी ने वाय वात्सल्य और माधुर्य दियो, वहीं रसखान जी ने ब्रज भाषाए अनन्य कृष्ण प्रेम और ब्रज अनुराग दियो और रहीम जी ने वाई भाषा को नीति सामाजिक व्यवहार और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति बनाए दीनो। या दृष्टि ते रसखान और

0: भीम ब्रजभाषा के क्षेत्र विस्तारक कवि हैं। ब्रजभाषा के साहित्यिक विकास में 16वीं व 17वीं शताब्दी को यह दौर अत्यंत महत्वपूर्ण रहो। आगे चलकर ब्रजभाषा भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों की प्रमुख साहित्यिक भाषा बनी है। इन दोनों कविन को महत्व केवल या तथ्य में नहीं कि वे मुस्लिम पृष्ठभूमि से आए हैं और ब्रजभाषा में लिखे हैं, वास्तविक महत्व यह है कि इन दोनों ने ब्रजभाषा को अपनो स्वाभाविक काव्य माध्यम बनाया। रसखान के काजे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और रहीम के काजे रहीमन धागा प्रेम को मत तोरो चटकाए, एक ब्रज के प्रति आत्मसमर्पण हते और दूजे में मानवीय संबंधन के प्रति संवेदना हते। या काजे ब्रज भाषा के साहित्य में इन दोनों को स्थान सांस्कृतिक समन्वय के उदाहरण मात्र के रूप में न आए बल्कि स्वतंत्र और उच्च कोटि के साहित्यकारों के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि एक पंक्ति में कहा जाए, रसखान ने ब्रजभाषा को कृष्ण प्रेम की आत्मीयता माधुर्य और ब्रज भूमि के प्रति अनुराग दीनों, रहीम ने वायु ब्रजभाषा को नीति लोकानुभव और जीवन दर्शन की गहरी अभिव्यक्ति प्रदान की नी। ज्या प्रकार दोनों ने मिलके ब्रजभाषा की भाव भूमि को भक्ति ते लोक नीति तक विस्तृत किया है और शायद यही कारण ब्रजभाषा के साहित्य में रसखान केवल मुस्लिम कृष्ण भक्त और रहीम केवल नीति दोहाकार नाए हैं, दोनों ब्रजभाषा के अपने कवि हैं। ब्रजभाषा के साहित्यिक इतिहास में इन दोनों कविन की स्थिति या प्रकार ते हम समझ सके हैं। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के विशिष्ट कवि होते हैं, प्रेम और ब्रज अनुराग के कवि ब्रजभाषा के अत्यंत सहज और सरस सवैया कवि होते हैं। रहीम भक्तिकालीन प्रमुख कवि ब्रजभाषा के नीति और लोकानुभव के कवि दोहा और बरवै परंपरा की महत्वपूर्ण शिल्पी हैं। हिंदवी को परिचय भी रहीम को इसी व्यापक रूप में रखे हैं। वे भक्ति नीति प्रेम और श्रृंगार के संगम के लिए स्मरणीय है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में रसखान के सवैयों की भाषा को विशेष रूप से सरल सरस और शब्दाडंबर मुक्त मानो जाए है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह आते है कि सूर कृष्ण की लीला के सांकेतिक मानचित्र बनाए, रसखान कृष्ण प्रेम और ब्रज के अनुराग सांकेतिक मानचित्र बनाए, रहीम मनुष्य का व्यवहार और जीवन की नीति अपनो सांकेतिक मानचित्र बनाए हैं। जैसी अलग अलग धाराएं दिखाई देवे, या दृष्टि से रसखान और रहीम एक दूसरे के पूरक दिखाई देवे हैं। रसखान की कविता पूछे है, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या है सके, उत्तर है ब्रज और कृष्ण। रहीम की कविता पूछे है, मनुष्य के जीवन को सुंदर क्या बनाए है, उत्तर प्रेम विनय विवेक और संबंधन की मर्यादा। समापन के लिए एक प्रभावी वक्तव्य ये कह सकें कि यदि हमें इसे किसी साहित्यिक गोष्ठी ब्रज महोत्सव विश्वविद्यालय कार्यक्रम या व्याख्यान में प्रस्तुत करना हो तो निष्कर्ष इस प्रकार रखो जा सके, ब्रज भाषा के साहित्य में रसखान और रहीम को महत्व केवल या बात में नहीं कि दोनों कवि भिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से आके ब्रजभाषा में लिखे हैं, उनको वास्तविक महत्व या बात में कि दोनों ने ब्रजभाषा की अभिव्यक्ति शक्ति को व्यापक बनाया। रसखान ने भाषा में कृष्ण प्रेम को ऐसी आत्मीयता दीनी कि ब्रजभूमि स्वयं प्रेम को आलंबन बन गई। रहीम ने वाई भाषा में जीवन के व्यवहार नीति प्रेम और श्रृंगार की ऐसी सरलता और मार्मिकता दीनी कि उनके दोहे लोक स्मृति को हिस्सा बन गए। या प्रकार रसखान ने ब्रज भाषा के हृदय को विस्तार दियो और रहीम ने वाके अनुभव जगत को, दोनों मिलकर प्रमाणित करे हैं कि ब्रज भाषा केवल काई संप्रदाय की भाषा नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति और अत्यंत सामर्थ्य की साहित्यिक भाषा है।
1: ब्रज साहित्य में रहीम और रसखान को स्थान। अभी आपने जे वार्ता सुनी, वार्ताकार है विकास खन्ना। मैं ना सचमुच ही रसखान

0: और रहीम दो भक्ति काल में ब्रज संस्कृति को अंग बने। रसखान और रहीम ने वियोग और संयोग दोनों को ही बड़ो प्यारो बड़ो मार्मिक वर्णन किया।
1: हाँ सखी, रसखान की भक्ति तो ऐसी ही है कि ब्रज को छोड़ना ही ना चाहते। मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
0: हाँ बहना, ब्रज की रज को रस तो योगी हूँ प्राप्त करना चाहे, क्योंकि बहना प्रेम भक्ति को विस्तार तो ब्रज के सौंदर्य में अटखेली करत भई गोप और गोपीन की लीलाएं हती, जिनन ने कवियन को रचनाकारन को अपनी ओर आकर्षित करो। एक ऐसो ही सवैया है रसखान को कि रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
1: कोट के कल घोत के घाम करील के कुंजन ऊपर वारों। सखी जो ब्रज के रसाचार्य हैं, बिनन ने जो रासलीला करी उनमें इन सब भक्तन की रचनान को रस उड़ेल के रख दियो।
0: पता है बेना, राधा कृष्ण के रहस्यमय पावन प्रेम को सबसे अधिक लोकप्रिय झूलन लीला ने बनायो, जो आजकल बड़ी मन भावनी हो बड़ी लुभावनी लगे।
1: हाँ सखी, तो चलो एक और लोकगीत मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में इन्हीं झूलन लीला को वर्णन करत भयो सुनवाए दे।
0: हाँ सुनवाए दियो।

0: चलो सखी ब्रज कुंजन की ओर, हिंडोरे झूले युगल किशोर।
1: सखी बड़ो ही प्यारो लोकगीत तो है ना।
0: हाँ बहना,
1: तो अब यही के संग ही हमारो आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न होवे है। मोको यानी के वंदना को
0: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाइवे की अनुमति देओ।
1: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने साथियों का विशेष कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे सभी प्यारे लिसनर्स को नमस्कार। वेलकम टू आवर सुपर फन रेडियो किड्स प्रोग्राम। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट द फन बिगिन। पर शुरू करने से पहले जरा एक बार अपने आप का परिचय तो दे दीजिए।
1: मुसाब
2: सर,
1: इसराज
3: सौर्य,
4: संस्कृति मडवाल,
5: अमाया गुप्ता,
6: मेरी नीति।
0: यहाँ पे तो बहुत क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं आज। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी लाइफ में लर्निंग कभी बंद नहीं होती। सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने तक और स्कूल से वापस घर आने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ बिल्कुल सही कहा।
0: कभी हमारी टीचर कोई नई बात सिखा देती है, कभी दोस्त मजेदार ट्रिक सिखा देते हैं, और कभी कभी तो हम अपनी गलतियों से ही सीख लेते हैं और फिर हमारी गलतियाँ कहती हैं चलो आज कुछ नया ही सीख लो। और मजे की बात तो ये है कि हर दिन की अपनी कोई एक नई ही लर्निंग होती है। तो आज देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे दोस्त ने ऐसे कौन कौन सी नई बात सीखी है। चलो तो शुरू सहर से करते हैं। बताओ सहर, आपने क्या सीखा?
6: मैं पहले साइकिल चलाना सीखी, बार बार गिरी लेकिन वापस साइकिल चलाना सीख गई।
0: अरे वाह सहर। चलो शौर्य अब तुम ही बता दो।
3: तो मैंने कंप्यूटर वेबसाइट्स पर प्रोग्राम करना सीखा है।
0: अरे वाह, अब इस राज की टर्न है।
1: सुबह से मिलने वाली सीख। हर सुबह जब मैं अपना बिस्तर खुद ठीक करता हूँ तो मैं चीजें व्यवस्थित करना सीखता हूँ, तो मैं डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखता हूँ। मैंने सीखा है कि अपनी छोटी छोटी काम खुद करने से भी हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। एक छोटी सी कविता जो मैंने खुद सीखी थी सुबह से मिलने वाली सीख पर। छोटी सी मेरी रोज की बात, दे जाती है सीख बड़ी खास। अपने काम खुद करना सीखो, बन जाओ अपने काम के बॉस।
0: अब संस्कृति से भी तो सुन लिया जाए।
4: मैंने तो पहली बार क्रोशे बनाना सीखा था, क्योंकि क्रोशे से बनी हुई हर एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं सोचती थी अगर इसे खुद से बनाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा।
0: पता है संस्कृति, मेरे पास एक क्रोशे का टॉप है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी किसी दिन।
4: हाँ जी जरूर।
0: अब फाइनली बारी आ ही गई परिनीति की, तो आप भी कुछ बताइए अपने बारे में।
6: मैं डेली योगा सीखती हूँ।
0: और परिनीति को डेली योगा सिखाता कौन है?
6: मम्मी पापा।
0: चलो बातें तो बहुत हो गई, एक गाना भी सुन लिया जाए।
7: हाँ।

दोस्तों, स्कूल का नाम सुनते ही हमारे सामने कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स और होमवर्क जो हर रोज हमारी टीचर हमें दे देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स। हर दिन हमारी टाइम टेबल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी मैथ्स, कभी साइंस, कभी इंग्लिश तो कभी सोशल।

0: साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में अक्सर एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी क्लास हमें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। तो जल्दी जल्दी बता दो, किसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है?
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिंदी है।
2: और हाँ, मेरा तो सिर्फ विज्ञान है यानी साइंस, वो जादू जैसा लगता है। जैसे कि शहद कभी खराब नहीं होता, चाहे वो हजारों साल पुराना भी क्यों ना हो।
0: हाँ शौर्य, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब जरा सहे से भी तो पूछ लिया जाए कि उनका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
1: हिंदी
0: अच्छा, तो सहर का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी क्यों है?
1: क्योंकि उनकी माँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है।
0: ये तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट उनकी टीचर की वजह से भी होता है। हिंदी में तो बहुत सारी कविताएं भी होती हैं, तो क्या कोई कविता है किसी
1: लक्ष्मी बाल पे मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने मन में पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
0: अरे वाह, चलो अब मुसाब से पूछती हूँ कि उसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
3: गणित मेरा पसंदीदा विषय है क्योंकि इसमें रटने के बजाय अभ्यास की जरूरत होती है।
0: अरे वाह मुसाब, अरे मैं देख रही हूँ इतनी देर से परिणीति मुझे चूटी मार रही है कि दीदी मुझे भी तो बोलने का मौका दे दो। चलो परिणीति, अब तुम बताओ।
4: मुझे हिंदी पसंद है और मैं आपके लिए कविता लेके आई हूँ।
0: तो जरा सुना भी दो।
4: एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, उत्तर से पश्चिम को जाए, धूमधाम जब घर को आए

0: अरे वाह परिणीति, कितनी क्यूट सी पोयम थी ये।
1: इस राज तुम बताओ।
2: मेरा सबसे प्रिय विषय है विज्ञान, साइंस। मुझे विज्ञान इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमें केवल पढ़ना ही नहीं पड़ता, बल्कि देखना, सोचना, सवाल पूछना और एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखना भी होता है। मुझे विज्ञान केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं लगता। विज्ञान हमारे चारों ओर है, हमारे घर में, हमारे प्लेग्राउंड में, आसमान में, पेड़ पौधों में, पानी में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में।
0: अरे वाह इस राज, अब अमाया से भी पूछ लिया जाए।
3: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, क्योंकि इसमें मेरे अंक ज्यादा आते हैं और साथ ही साथ पढ़ने में बहुत इजी होता है।
0: मैंने एक बात तो नोटिस की है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट या तो हिंदी है या फिर साइंस है। चलो अब फिर से एक गाना सुन लिया जाए।
4: हाँ जरूर।

0: परिणीति प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे बता रही थी कि दीदी पता है आज मैं गाना भी लेके आई हूँ, तो चलो अब परिणीति जी से गाना सुन लिया जाए।
1: हाँ दीदी।
0: तो चलो सुने इसका गाना।
2: हाँ, हाँ, हाँ।

0: பூரி கட்டும் பூரி கதே.
1: परिणीति का गाना सुन के तो मुझे भी एक गाना याद आ रहा है।
2: अच्छा जी संस्कृति, तो सुना भी दो।
1: ठीक है सुना देती हूँ।

0: वाह संस्कृति, कितना सुंदर गाना गाया तुमने। दोस्तों अभी हमने बात की कि हर दिन कुछ नया सीखना कितना मजेदार होता है, और सच कहें तो सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, कभी किसी की बातों से, कभी किसी के काम से, तो कभी किसी की पूरी जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचिए अगर कोई इंसान सादगी से रहे, सच का साथ दे और मुश्किल में भी अपने रास्ते पर बना रहे तो उसके अंदर कितना खास गुण होंगे। और ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों अब जरा जानें कि गांधी जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी ऐसी खूबियां थीं जो उन्हें इतना खास बनाती हैं और जिनसे हम आज भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं। चलिए शुरू हो जाइए।
1: मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है महात्मा गांधी जी की। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते थे। वे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में से एक थे। जब मैं गांधी जी की तस्वीर देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे उनके गोल चश्मे, सफेद धोती और शांत मुस्कान दिखाई देती है। गांधी जी बहुत ही सरल जीवन जीते थे। वे खादी के कपड़े पहनते थे और चरखा चलाते थे। वे मानते थे कि हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए।
0: हाँ इसराज, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो संस्कृति, आप बता दो।
2: महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। वह मानते थे कि बिना अहिंसा के भी बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को हमेशा सच बोलने, मेहनत करने और अपने देश से प्रेम करने की सीख दी।
0: बहुत बढ़िया संस्कृति। चलो शौर्य, जरा आप भी कुछ बता दो।
3: तो मैं उनके बारे में तीन कहानियां सुनाना चाहता हूँ।
0: तीन? चलो आप सुना दो।
3: तो एक बार गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जैसे ट्रेन चल पड़ी उनका एक जूता फिसल कर सीधा ट्रैक पर गिर गया। तो गांधी जी ने दरवाजे बंद होने से पहले ही दूसरा जूता उनके पहले वाले के ठीक बगल में ही फेंक दिया। उनके आसपास खड़े हुए लोग हैरान हो गए। बापू, आपने अपना दूसरा जूता क्यों फेंक दिया? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई गरीब रेलवे ट्रैक से मतलब कि जा रहा होगा तो एक जूता उसके किसी काम का नहीं। दो जूते वो कम से कम पहन तो पाएगा। और हाँ दूसरी, तो एक बार गांधी जी की एक छोटी सी पेंसिल आश्रम में गुम गई। वो इतनी छोटी थी उसको पकड़ना तक भी मुश्किल हो जा रहा था। कुछ लोगों ने उनको नई पेंसिल देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर अपनी पुरानी पेंसिल ढूंढ ली। और फिर गांधी जी ने बोला, ये ना मुझको मद्रास ने एक बच्चे ने बड़े ही प्यार से दी थी और मैं किसी के प्यार को अनदेखा नहीं कर सकता। तो ये कहानी बताती है गांधी जी के पास नेशन के लिए कितना प्यार है। और तीसरी, तो ना एक बार गांधी जी एक छोटे से पाठशाला में बच्चों से मिलने गए। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो गांधी जी की सिंप्लिसिटी देखकर उदास हो गया। गांधी जी उनके पास आए और बड़े ही प्यार से पूछा कि वह उदास क्यों है। बच्चे ने बोला, बापू आप सिर्फ धोती क्यों पहनते हैं, कुर्ता क्यों नहीं, आपको ठंड नहीं लगती? तो फिर बात

0: अपनी मम्मी से आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, ये बच्चे ने कहा था। गांधी जी ने कहा, अरे मैं ही नहीं हूँ जिसके पास कुर्ता नहीं है, और हाँ मैं सिर्फ तभी ऊपर का हिस्सा पहनूंगा जब मेरे लाखों बहन भाइयों के पास भी कपड़ों की कमी नहीं होगी।
1: अरे वाह शौर्य, कितनी मोटिवेशनल कहानी थी। तो अब सेहत भी कुछ बोलना चाह रही हैं।
2: मैं आज गांधी जी के बारे में कविता सुनाना चाहूंगी। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर थर थर थर सुनकर उनका नाम रे। बंदे में था दम, बंदे मातरम, बंदे में था दम, बंदे मातरम।
3: अरे मुझे तो इस कविता पर एक गाना याद आ रहा है।
1: अच्छा तो जरा सुना भी दो वो गाना।
3: ठीक है।

0: बहुत ये अच्छा, तो
1: बहुत अच्छा गाना था।
2: मुझे दिख रहा है अमाया के पास भी कुछ है, तो जरा सुना जाए उसका भी।
3: महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरक प्रसंग चलो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम गांधी जी के बचपन का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग सुनने जा रहे हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि ईमानदारी छोटे उम्र से ही हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। बात उस समय की है जब मोहनदास यानी गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल में अंग्रेजी अधिकारी द्वारा विद्यार्थी की वर्तनी की परीक्षा ली जा रही थी। परीक्षा के दौरान गांधी जी से एक शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई। उनके शिक्षक ने उन्हें संकेत किया कि वे पास बैठे विद्यार्थी की कॉपी देखकर वह स्पेलिंग लिख ले, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। यानी उस समय भी उन्होंने यही सोच कि अंक कम मिल जाए, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता तो गलत तरीके से उत्तर लिखने या नकल करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कम अंक उसे सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन बेईमानी हमारे चरित्र को कमजोर कर सकती है।
2: अरे वाह अमाया, बहुत खूब। अरे हम इतनी देर से गांधी जी की बातें करे जा रहे हैं, पर किसी ने ये सोचा कि हम क्यों करे जा रहे हैं गांधी जी की इतनी सारी बातें?
4: क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है।
2: जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की सीख दी थी।
5: हाँ आपने सही कहा, लेकिन अब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या आपको पता है 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष की जयंती हम मनाते हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका नारा था जय जवान जय किसान। वह अपनी सादगी के लिए ही जाने जाते थे।
6: मुझे गांधी जयंती के बारे में बोलना है।
2: हाँ हाँ बोलो मुसा।
6: गांधी जी सत्य और अहिंसा के पर चलते थे। उनका मानना था कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मबल और शांति से इसे जीता जा सकता है। वह दुनिया में फेमस होने के बावजूद एक आम इंसान के तरह बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनका पहनावा और रहन सहन उनकी सादगी का प्रतीक था।
2: हाँ मुसाब, आपने बिल्कुल सही बात की। तो दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम में हमने कितनी सारी चीजें देखी, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में, हर दिन कुछ नया सीखने के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी जी और उनके गुणों के बारे में, जिनसे हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो किसी को मैथ या फिर किसी को आर्ट पसंद है, और यही तो हमारी खूबसूरती है। हर किसी की अपनी पसंद और अपने सीखने की कहानी होती है, और अगर हम हर दिन बस एक नई चीज सीखें और साथ ही सच्चाई, सादगी और अच्छे व्यवहार जैसी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर दिन थोड़ा और स्पेशल बन सकता है। तो इसी प्यारी सी लर्निंग और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, तो चलो जाते जाते महात्मा गांधी जी का एक भजन भी सुन लिया जाए।
4: हाँ बिल्कुल,
2: जिसका नाम है रघुपति राघव राजा राम, जो कि गांधी जी का फेवरेट भजन था।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी से मैं वसीम अहमद और मेरी सहयोगी,
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में।
0: विश्व और भारत में चल रहे तमाम खेलों के नतीजे, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खबरों के साथ खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जापान के आयोची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के कल और आज शाम खेले गए मुकाबलों में भारतीय प्रदर्शन की और नतीजों की भी, और साथ ही बात होगी भारत बनाम वेस्ट इंडीज पुरुष टीमों के बीच खेले जाने वाले 3 एक दिवसीय श्रृंखला के आज चल रहे पहले मैच की, और चेस की दुनिया में भी हम आपको लेकर चलेंगे। बात सबसे पहले करते हैं एशियन गेम्स 2026 की, जो कि आयोची नगोया में चल रहे हैं,
1: और शुरुआत करते हैं आज के दो बड़े प्रदर्शन से, स्क्वैश और आज पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल यानी गोल्ड मेडल मैचेस खेले गए। महिला वर्ग में अनहद सिंह और पुरुष वर्ग में अभय सिंह दोनों ही खिलाड़ियों ने मैच में रजत पदक अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों का सामना मलेशिया के खिलाड़ियों से था। महिला फाइनल में मलेशिया की विश्व नंबर 5 खिलाड़ी ने 18 वर्षीय अनहद सिंह को 11-4, 11-4, 11-7 से हराया। वहीं दूसरी तरफ विश्व में 17 नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के, विश्व में 26वें नंबर के खिलाड़ी भारत के अभय सिंह को 11-9, 11-5, 11-5 से हराया। इन दोनों नतीजों का मतलब मलेशिया को दोनों स्वर्ण और भारत को दोनों रजत पदक मिले। अनहद सिंह के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब वह पहली भारतीय महिला बनी जो एशियन गेम्स के स्क्वैश में फाइनल में पहुंची। अनहद और अभय ने जहां रजत पदक जीता, वहीं लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक्स खेलों में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से चूक गए। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर।
0: एथलेटिक्स में महिला 400 मीटर के फाइनल में प्राची चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर भारत की मेडल तालिका में बढ़ोतरी कर दी। प्राची ने यह मेडल 53.21 सेकेंड्स की टाइमिंग के साथ हासिल किया। वहीं बहरीन की सलवा नासिर ने गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए 49.20 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी मुकाबले में दूसरी भारतीय महिला एथलीट किरण पहल ने 53.41 सेकेंड्स के साथ पांचवां स्थान हासिल किया।
1: और एक और अच्छी खबर एथलेटिक्स से, भारतीय एथलीट हनीता बराना ने 200 मीटर की दौड़ में 23.20 सेकेंड्स की टाइमिंग्स के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया और भारत के पदकों की संख्या को आगे बढ़ाया। पुरुषों के 200 मीटर दौड़ में भारत के अनिमेश कुजूर 20.80 सेकेंड्स की टाइमिंग्स के साथ पांचवें स्थान पर रहे। और महिला लॉन्ग जंप से भी एक अच्छी खबर आ रही है। एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की लंबी कूद के साथ रजत पदक विजेता बनी और वो स्वर्ण पदक की दौड़ से मात्र 2 सेंटीमीटर से चूक गई।
0: अब बात करेंगे बैडमिंटन में। बैडमिंटन में भारत को आगे बढ़ाने का जिम्मा 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा उन्नति हुडा ने बखूबी निभाया। सिंधु ने दूसरे दौर में ताइपेई की पिंचियान चियू को 21-19, 21-14 के सीधे सेटों में हराया। तीसरे दौर में उनका सामना हुआ जापान की तोमोका मियाज़ाकी से। सिंधु को क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का करने के लिए उन्होंने उनको 21-9, 21-13 से एक तरफा जीत हासिल करी। वहीं क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यूफेई से वे हार गईं। दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी उन्नति हुडा के ने अपने दूसरे दौर में मलेशिया की वोंग लिंगचिंग को 3 गेम तक चले 21-14, 20-22, 19-21 से 2-1 के मैच से अपने नाम किया, और क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से कड़े मुकाबले में 1-2 के सेट स्कोर से हार के मेडल रेस से बाहर हो गईं। उन्होंने इससे पहले तीसरे दौर में थाईलैंड की पुत्री कुसुमा वरदानी से 21-19, 21-13 से भी जीत दर्ज करी थी।

पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन दूसरे दौर में सिंगापुर के यू क्योन लो से दूसरे दौर में 1-2 के गेम स्कोर से हार गए। वहीं आयुष शेट्टी ने दूसरे दौर में कजाकिस्तान के मकसूद ताजबुलायेव को 21-7, 21-7 से हराया, लेकिन तीसरे दौर में ताइपेई के तियन चियन चोउ से 16-21, 21-19, 17-21 से हार कर मेडल रेस से बाहर हो गए।

0: बैडमिंटन की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, वहीं महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने जापानी वर्ल्ड रैंक 3 की यूकी और मायू की जोड़ी से 24-22, 24-21, 18 से हराया था त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। और लेकिन क्वार्टर फाइनल में अपने से ऊंची रैंक वाली जो एक और जोड़ी थी उसको सीधे सेटों में उन्हें 18-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मिश्रित युगल में भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने विश्व रैंक एक मिश्रित जोड़ी चाइना की जोड़ी को 1-3 गेम तक चलते कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18 और 18-21 से हार का सामना करना पड़ा।
1: अब हम भी निशाना लेते हैं तीरंदाजी पर। जी हाँ, आर्चरी में भारत के लिए एक बहुत रोमांच से भरा आकर्षक दिन रहा, जहां टीम स्पर्धा में हर टीम हर इवेंट में आगे बढ़ गई। रिकर्व इवेंट से शुरू करते हैं। रिकर्व टीम के क्वार्टर फाइनल में धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे की टीम ने एक आकर्षक प्रदर्शन करते हुए चाइना को 5-2 से हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। महिला रिकर्व टीम की भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत, कुमकुम अनिल मोहोद और कीर्ति शर्मा ज्यादा आक्रामक और अचूक निशाने लगाती नजर आईं। उन्होंने इस क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई को 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय मिक्स टीम भी मेडल की रेस में आगे बढ़ी। धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम अनिल मोहोद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 6-0 से हराया और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को भी 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सो रिकर्व इवेंट में भारत की तीनों टीमें अब सेमीफाइनल में हैं। सेमीफाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला ईरान से, महिला टीम का मुकाबला चाइना से और मिक्स टीम का सामना जापान से होगा। ये तीनों सेमीफाइनल मुकाबले 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे।
0: श्रोताओं, आर्चरी में अच्छा प्रदर्शन जारी है। कंपाउंड टीम इवेंट में भी भारतीय पुरुष, महिला और मिक्स्ड टीम भी मेडल की रेस में बनी हुई है। आज पुरुष कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशाल दलाल की भारतीय टीम में भूटान को 235-232 के नज़दीकी मुकाबले में हार कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में चिकिता ज्योति सुरेखा और प्रीतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को 233-230 के स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की। और दूसरी तरफ एक और बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में चिकिता और साहिल जाधव ने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया को 160-146 के स्कोर से हराया और उसके बाद कजाकिस्तान को 159-154 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कंपाउंड इवेंट के सेमीफाइनल में पुरुष और महिला दोनों टीमों का सामना साउथ कोरिया से होगा और मिक्स्ड टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। ये तीनों मुकाबले 30 सितंबर को होंगे।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया से आर्चरी में भारत के लिए बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 6 इंडियन टीम 2 इवेंट के सेमीफाइनल्स पहुंच चुकी हैं और भारत के पास कई मौके हैं आने वाले दिनों में मेडल जीतने के लिए। बात अब करेंगे कुराश की। भारत के लिए आज कुराश में अच्छा दिन नहीं रहा। पुरुषों के 90+ किलोग्राम भार वर्ग में यश कुमार चौहान अपना राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल मैच ताजिकिस्तान के शकर मामाद मीरा मामादोव से 0-10 के स्कोर से हार गए। वहीं विशाल इसी भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में तो पहुंचे लेकिन थाईलैंड के ये ऑन से 0-5 के स्कोर से हार गए। महिला

0: के 57 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 32 में संगीता को फिलीपींस की सी क्वेलिनो से 0-10 के स्कोर से हार मिली। वहीं भारती को राउंड ऑफ 16 में ईरान की तहरे अजर पाइवान से 0-3 के स्कोर से हार मिली। तो आज कुराश में भारत के 4 खिलाड़ियों का सफर समाप्त हुआ, लेकिन कुराश में भारत का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। विपिन कुमार पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में 29 सितंबर को एक्शन में होंगे और महिला में पिंकी बलहारा 78 किलो भार वर्ग में 28 सितंबर को एक्शन में होंगी।
1: और फेंसिंग की बात कर लेते हैं। फेंसिंग में भारतीय महिला सेबर टीम के लिए आज निराशा भरा दिन रहा, जहां उनका अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय महिला फेंसिंग टीम की खिलाड़ी भवानी देवी, श्रेया गुप्ता, जेजा रानी जेएस और श्रुति जोशी उज्बेकिस्तान के खिलाफ 35-45 के स्कोर से हार गई। महिलाओं के ट्रैप इवेंट में शूटिंग की बात करें तो महिलाओं के ट्रैप इवेंट में नीरू डांडा अभी एकल तालिका में प्रथम स्थान पर बनी हुई हैं। उन्होंने पहले दिन 50 में से 48 निशानों पर वार किया। दूसरी तरफ अरिमा अहलावत 16वें स्थान पर हैं। महिला ट्रैप इवेंट में अंक तालिका में दूसरे दिन दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं।
0: पुरुष ट्रैप इवेंट में किनान चेनाई को परफेक्ट स्टार्ट मिला। उन्होंने अपने ओपनिंग राउंड में सभी 25 निशाने लगाए और दूसरे राउंड में 22 निशाने लगाए। वो व्यक्तिगत तालिका में 11वें स्थान पर हैं और शपथ भरद्वाज 22वें स्थान पर। भारतीय पुरुष टीम ने पहला दिन 7वें स्थान पर खत्म किया। प्रिसिशन इवेंट की बात करें तो भारतीय महिलाओं ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया। भारतीय महिला दल में ईशा सिंह 290 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर हैं, राही सरनोबत 15वें और मनु भाकर 16वें स्थान पर हैं। दोनों के ही 287 अंक हैं। भारतीय शूटिंग के लिए अभी बहुत एक्शन आना बाकी है। इक्वेस्ट्रियन की बात करेंगे अब हम। इक्वेस्ट्रियन में भारत की दावेदारी आज समाप्त हो गई। 2022 में भारत ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था, लेकिन 2026 में इस स्पर्धा में मेडल से वंचित रह गए।
1: और बॉक्सिंग की ओर चलते हैं। और बॉक्सिंग में पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के अंकुश पंघाल ने तजाकिस्तान के नेक्रू को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। और वुमेन्स 65 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता को प्रवीण हुड्डा और प्रवीण हुड्डा में 5-0 से नवभाकर को सेमीफाइनल में हराया, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जगह पक्की करी। और वहीं मेंज 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन जो है वो सचिन सिवाच जापान के खिलाड़ी से 1-4 से हार गए। वहीं 90 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में नरेंद्र बरवाल ने रेफरी स्टॉप कॉन्टेक्स्ट यानी कि आरएससी के जरिए मैच जीत लिया थाईलैंड के खिलाड़ी से।
0: आज बॉक्सिंग के अन्य महत्वपूर्ण मैच में महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में भारत की लवलीना बोरोगेन के सामने होंगी दक्षिण कोरिया की सुवेन सियोंग। 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की प्रिया के सामने होंगी तजाकिस्तान की विजगोना समदोवा। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग क्वार्टर फाइनल में भारत के कपिल पोखरिया के सामने चाइना के शुएजिन की चुनौती होगी। हॉकी की बात करें, हॉकी में भारतीय महिला टीम अपने मजबूत खेल से अंतिम ग्रुप मैच में सिंगापुर से हाफ टाइम तक 5-0 के स्कोर से आगे थी। मैच का पहला क्वार्टर दोनों टीमों के बीच गोल रहित रहा। यह आश्चर्यजनक बात थी, जहां की भारतीय टीम भी एक भी गोल पहले क्वार्टर में ना कर सकी थी।
1: और अभी तक शानदार मुकाबले चल रहे हैं भारत की ओर से और मेडल टैली लगातार बढ़ रही है। इसी बीच हमने बात करी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली जी से, आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं।
2: जी हाँ, देखिए जो जो फॉलो करते हैं क्लोजली, वो थोड़ा सा उनको निराशा ये होगी कि कुछ एक इवेंट्स ऐसे थे जिसमें हमको मिलने चाहिए थे, बेटर रिजल्ट होने चाहिए थे, लेकिन ये जो 4 गोल्ड है इसमें से कबड्डी के तो एक्सपेक्टेड थे
1: जी।
2: जो है 2 गोल्ड मेडल और महिला जो क्रिकेट टीम है वो भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग

हैं। तो ये अगर देखेंगे तो जो उनके कोचेस हैं, जो फैंस हैं, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तक तो, जैसे आपको याद होगा, पिछले एशियन गेम्स में 100 से ऊपर लाए थे मेडल्स, इस बार भी उम्मीद यही है। और कितना

0: तो अश्वनी भाई,
1: जी
0: ये भाई सुन रहे थे उपदेश ऋषिपाल नागर की आवाज में, और जितनी बातें बताई वही बहुत बढ़िया बातें इन्होंने कही जिन पर हमें अमल करना चाहिए। और जो अगली फरमाइश आई है वो है राजकुमार लड़ाना की आवाज में एक उपदेश सुनने के लिए, और इसके लिए जो पत्र हमारे पास हैं वो इस प्रकार से हैं। गांव सूप जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, क्षितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता और श्रेयांश, ये हैं। बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्र पाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। गांव रठौड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा। पपरावट दिल्ली से भाई नफे सिंह मुदगल, रूपति मुदगल और इनका परिवार।
1: और इनागर कोला से ये छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और उनका पूरा परिवार। और एक दिल्ली उत्तर नगर से पत्र मिला है, वो सुनना चाहते हैं राजकुमार लडाना को, रुक्मिणी देवी, कोमल भारती रायपुरिया, नानू और भव्या। और एक और पत्र मिला है, ये है गाँव खोकरवाली गंगानगर से विनोद बरसाना, रोशनी बरसाना, ये भी हमारे पुराने कलाकार
0: हैं। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से किलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम सेजल साहू और इनका परिवार। और गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांत। और ये है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा।
1: और जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, उनका पूरा परिवार। और ये
0: गांव पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सतेंद्र कुमार चंदोसोलिया, आदर्श सार्थक और आलौकिक चंदसौलिया।
1: और मलोट पंजाब से है राज राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, उनका पूरा परिवार। और ग्राम छत्तीसगढ़ हादसा नंबर 2 से कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और उनका पूरा परिवार। और ये कोटवारा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से पत्र लिखते हैं हमारे पुराने श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, उनका पूरा परिवार। दुपहिया नेदावाला जिला गाजियाबाद गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और पंजलय, उनका पूरा परिवार।
0: धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहुजा।
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है ये मुकेश कुमार शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, उनका पूरा परिवार। और ये पत्र मिला है परेला टिकुंगड़ मध्य प्रदेश से है बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और उनका पूरा परिवार। और मेहरगढ़ उमरेन खंड महाराष्ट्र से है अभिजीत गावे जी, श्रीमती सरिता और उनका पूरा परिवार।
0: तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर राजकुमार लड़ाना को।

0: और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था, इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3,000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथोनॉल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जी नगमा भाई
1: भाई देखिए, कृषि से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हम अपने
0: जी
1: इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और जो कृषि से जुड़ी संस्थाएं हैं किस प्रकार से वो योगदान दे रही हैं, उनका किसानों के लिए काफ़ी महत्व है। और आज हम भाइयों को सबसे पहले सुनवा रहे हैं CWC यानी केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वेलफेयर कॉरपोरेशन की जो 64वीं वार्षिक बैठक हुई है उस पर एक रेडियो रिपोर्ट। तो आइए सुनते हैं।
2: कॉरपोरेशन यानी केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक रत्न उपक्रम है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निगम समय समय पर किसानों के हित के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम करता रहता है। साथ ही साथ कृषि उत्पादों के रख रखाव में अहम भूमिका निभा रहा है। विगत दिनांक 25 सितंबर 2026 को NCUI के सभागार में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा अपने अंशधारियों के साथ 64वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल, CWC के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा, निगम के निदेशक मंडल के सभी सदस्य श्री विपिन भाई एन पटेल के साथ साथ निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित देश भर से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा ने निगम की साल भर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया।
3: आप सभी को नमस्कार। ये अवसर हमें न केवल वर्ष के दौरान अपने वित्तीय और परिचालन निष्पादन की समीक्षा करने, बल्कि हमने जो प्रगति की है उसका आकलन करने, अपनी सामूहिक उपलब्धियों को स्वीकार करने और आगे की राह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का अवसर प्रदान करती है। आगे की दिशा में बढ़ते हुए हमारा ध्यान अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने, परिचालन उत्कृष्टता बढ़ाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सतत मूल्य सृजित करना, उस पर केंद्रित है। निगम बुनियादी मानव शक्ति पर निर्भर गोदामों से विकसित होकर प्रौद्योगिकी सक्षम, समेकित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम में परिवर्तित हो रहा है। निगम ने अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर और लाभ अर्जित किया है तथा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेखनीय विस्तार करते हुए 164.15 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 986 गोदामों का संचालन किया है। निगम ने बिहार, असम और महाराष्ट्र राज्यों में निजी पक्षों को प्रोक्योरमेंट सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अंतर्गत निजी एजेंसियों की ओर से किसानों से मक्का, सोयाबीन जैसी वस्तुओं की ओर सीधे खरीद की जाती है, जिसके उपरांत वैज्ञानिक भंडारण तथा निजी एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक को डिलीवरी की जाती है। सुस्थिर एवं सामाजिक दायित्व पर बल देने वाले अपने मिशन स्टेटमेंट के अनुरूप निगम ईवी आधारित परिवहन समाधानों के माध्यम से सतत लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दे रहा है। सुस्थिर विकास के लिए मजबूत आधार के साथ मुझे विश्वास है कि निगम तेजी से बदलते लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का सफलतापूर्वक सामना करेगा और विश्वसनीयता तथा उत्कृष्टता के साथ निरंतर सेवाएं प्रदान करता रहेगा। आगामी वित्त वर्ष में प्रवेश करते हुए हम नए अवसरों का लाभ उठाने और एक विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए तैयार हैं। हम मिलकर अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए निरंतर मूल्य सृजित करते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।
2: इस अवसर पर श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्रीय भंडारण निगम की उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
3: भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, नाफेड।

0: भारतीय कपास निगम और सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान समुदाय सहित हमारे प्रमुख डिपॉजिटर्स के प्रति भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करता है। मैं अपने सम्मानित बोर्ड सदस्यों के रणनीतिक मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट टीम और कर्मचारियों का भी आभारी हूँ, जिनकी निष्ठा और समर्पण हमारी सफलता का आधार है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा भारत सरकार का भी अनेक निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और साझा उद्देश्य के माध्यम से हमने एक सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार उद्यम का निर्माण किया है, जो निरंतर विकास करने और स्थायी मूल्य सृजित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस उल्लेखनीय यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हुए आपके निरंतर सहयोग, विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।
1: इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री बिपिन भाई एन पटेल ने सहकारिता और आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
2: सभागार में उपस्थित सभी सहकारी बंधुओं, बघेल साहब की सारी बातों से मैं अपने को जोड़ता हूँ। एक बात उन्होंने अधिकार कह दी, ये अधिकार उनको नहीं था, रुपये बढ़ाने वाली बात, ये तो हम लोगों के बीच में अभी ईश्वर की कृपा से आदरणीय रामहट जी हैं, इनका आशीर्वाद हमको सबको मिलता है, ये काम उन्हीं के जिम्मे है और MD साहब इन्हीं की मानते भी है। बघेल साहब आप कितना भी कहो, जो रामहट जी कहेंगे आदरणीय MD साहब वही करेंगे। मुझे आपके ज़्यादा कानून काजा नहीं मालूम, लेकिन मैं सहकारिता के क्षेत्र से आता हूँ, ये बात बघेल साहब की बिल्कुल सही है, इसको आप लोग अन्यथा मान लें कि आपके शेयरधारक तो हजारों करोड़ के होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे अंशधारक ही आपकी AGM की शोभा बढ़ाते हैं, तभी आपकी AGM कामयाब होती है। बैंक क्षेत्र से केवल बड़ी स्थानीय जी हैं, ये सौभाग्य हमारा कि हमारे सहकारिता क्षेत्र के ही है, वरना ये पद भी किसी दूसरे के पास होता, अफसर के पास, वो मंच में नहीं आता। इसी क्रम में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, नए मेंबरशिप भी समितियों को लेनी चाहिए आपको। बहुत तो हम जैसे कोऑपरेटर हैं जो आपके AGM आने के लिए चिरौनी करते दूरी सरकारी संस्थाओं से कि भैया आप हमारा प्रस्ताव भेज दो, न गिफ्ट के लिए आते हैं न उसके लिए आते आते सिर्फ इसलिए पूरे देश के सहकारी लोगों से मुलाकात हो जाती है और आपके दर्शन हो जाते हैं। तो हमारा आग्रह ये है कि अगर आपको ठीक लगे तो मेंबरशिप खोलनी चाहिए, नई समितियों की मेंबरशिप और लेनी चाहिए और आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी।
1: इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री मनीष सहानी ने जानकारी देते हुए कहा।
3: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में मंच पर मंचासीन संस्था के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकगण, संचालक मंडल के सदस्यगण और जो भी इस संस्था के शेयर होल्डर हैं, इसमें से तमाम लोग मुझे इस कोऑपरेटिव में सिखाने वाले और कोऑपरेटिव में मुझे बढ़ाने वाले, कोऑपरेटिव के अंदर मेरी कैसे उपस्थिति रहे उसमें मुझे सहभागी बनाने वाले ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे यहाँ प्रतिनिधि भेजा और उसके कारण मैं यहाँ पर संचालक बन पाया। सबसे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए केवल इतनी एक बात कहूंगा कि बड़े पैमाने पर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट सहकारिता का खड़ा किया जा रहा है और सहकारिता को हर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से खड़ा करने का काम माननीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है और ये पक्ष हो या विपक्ष हो सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में काम ना हो रहा हो। नई सहकारी समितियों के बनाने से लेकर के नए गोदाम से बनाने से लेकर के मार्केट के अंदर सहकारिता का कैसे सामान बिके, कैसे उसकी खरीद हो, कैसे उसकी बिक्री हो और कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, इस सारे काम में माननीय अमित शाह जी ने एक अद्वितीय काम जिसे कहते हैं सहकारिता के क्षेत्र में किया, क्योंकि हम पहले सहकारिता के क्षेत्र में बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे थे। अभी हम देश के एक बड़े बोर्ड में संघानी साहब डायरेक्टर बने हैं वहां, तो ये सब हमारे आप सबके जो जितना हम लोग ने देखा है कोऑपरेटिव को, पहले उदयशंकर अवस्थी जी हम लोग कोऑपरेटिव के अंदर उनको भी एक भीष्मितामह मानते थे, उन्होंने भी एक बड़ी संस्था खड़ी की IFFCO की और हम सबका बड़ा सहयोग बड़ा प्यार उनका रहता था। ऐसे सभी बोर्डों में जहां लोग आज बैठे हैं जो आए हैं उन सबका भी बड़ा सहयोग प्यार है, मैं इतनी ही बात कहूंगा।

0: सभी के साथ हम सीडब्ल्यूसी को भी एक कॉरपोरेशन के साथ में सहकारिता से जुड़ी संस्था मानते हैं, इसलिए कुछ सहकारी नई संस्थाएं जो बन रही हैं ऐसी प्रयास होना चाहिए कि उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनकी कुछ सदस्यता का कुछ ऐसा उपक्रम करें। कुछ जो डेलीगेट्स के लिए जो जो समितियां हट गई हैं, जैसे बैंक्स को हमने हटा दिया है, तो उनके शेयर होल्डर्स भी बाकी दूसरी संस्थाएं हो सकें। अच्छे लोग आपके पास आएंगे, अच्छे सुझाव देंगे। निश्चित रूप से आप ये मान के लिए कि हम लोग तो कभी सीडब्ल्यूसी का बहुत पहले का एक समय याद करते हैं तो आज में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कभी यहाँ सीडब्ल्यूसी की जो स्थिति थी उसमें आज जमीन आसमान का अंतर है। उसके लिए इस समय का प्रबंधक समिति जो है और इससे पहले वाली प्रबंध समिति, इन सारे लोगों का और संतोष जी ने बहुत प्रयास किया है और मेरे को मेरा जितना अभी तक का इनका सानिध्य हुआ है, जितनी बातचीत हुई है एक बोर्ड बैठक के, लेकिन इनकी बहुत अप्रोच है ऐसी। और एफसीआई के चेयरमैन साहब हमारे साथ जो वर्तमान में चेयरमैन है हमारे भी, उनका भी बड़ा सोच ऊंची है और बड़ा अच्छा सहयोग करने को तैयार हैं वो, और उनकी बातचीत भी ऐसी है कि संस्था और आगे बढ़े और इतने बड़े पैमाने पर ये जो हम लाभ में हैं, निश्चित रूप से प्रबंधन अच्छा है, तभी कोई संस्था लाभ में आती है। मैं सारे प्रबंधन को धन्यवाद भी करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने समय आपके साथ रहूंगा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करूंगा। मेरी तरफ से कहीं कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझसे बड़े हैं, एक बार मुझे अगर आप सुझाव देंगे टोकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आपको कहीं ऐसा स्थिति आएगी, मैं आपके पूर्ण सहयोग से ही काम करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। जय हिंद, जय सहकारिता।
1: निगम की निदेशक मानव संसाधन सुश्री संगीता राम रखियानी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा,
2: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, विशिष्ट शेयरधारक, अधिकारीगण तथा देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का निगम की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति एवं सहयोग उत्साहजनक है। यहाँ प्रस्तुत किए गए आंकड़े तथा विवरण हमारे संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जिसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा गतिशील दृष्टिकोण ने निगम की प्रगति के लिए एक सशक्त आधार दिया है। आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व तथा कार्यनीतिक दिशा निर्देशन ने निगम की प्रगति एवं विस्तार को एक नई मजबूती प्रदान की है, जो इस संगठन को सतत विकास की ओर ले जा रही है। मैं निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके विवेकपूर्ण मार्गदर्शन ने निगम को बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने एवं परिचालन उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिन उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, यह उनके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोगजनक दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो पाया है। मैं हमारे सभी हितधारकों, अंशधारकों, सहयोगी एजेंसियों तथा सहकारी समितियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपका अटूट विश्वास, सहयोग एवं समर्थन हमारी निरंतर वृद्धि एवं सफलता का अभिन्न अंग है। प्रबंधन की ओर से मैं हितधारकों को आश्वस्त करती हूँ कि निगम परिवार आगे भी सफलता के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर निगम के समग्र कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने में हमारे सभी व्यावसायिक भागीदारों, सहयोगियों एवं सम्मानित ग्राहकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद करती हूँ। निगम परिवार के सभी कर्मचारियों एवं सदस्यों का अपार समर्पण एवं अथक प्रयास भी सराहनीय है। मैसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स के सामिधिक लेखा परीक्षक ऑडिटर श्री आशु गोयल जी का भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं गत वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यक्ष महोदय श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी एवं निदेशक गणों श्री सिद्धार्थ शंभू जी, श्री रवि रंजन जी तथा श्री डीएस राठौड़ जी द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग ने हमारी यात्रा को नई दिशा प्रदान करते हुए उस पर स्थायी

0: गहन सकारात्मक प्रभाव डाला है। अंततः मैं आज यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ तथा निगम की प्रगति के लिए अथक प्रयास जारी रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को दोहराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: इसी के साथ केंद्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की 64वीं वार्षिक साधारण बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, सहयोग दिनेश कुमार, संयोजक शिव नंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो अश्वनी भाई
3: जी,
2: अभी हमारे भाई एक रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे 64वीं वार्षिक बैठक के ऊपर जो केंद्रीय भंडारण निगम की अभी संपन्न हुई थी। तो ये रेडियो रिपोर्ट भाइयों ने सुनी और हम जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जब खेती किसानी का काम करते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत समय समय पर पड़ती है, क्योंकि कृषि में समय निकल गया तो फिर हमारी खेती का काम खराब हो जाता है। उनको पैसे ना किसी से उधार लेना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई हुई है, जिससे कि भाई कार्ड बनवा करके बैंक से पैसे लेकर अपने संसाधन जुटा सकते हैं। जो उनको निवेश करना है खेती में, उसके लिए उनके पास पैसे उपलब्ध हो जाते हैं।
3: और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं नेका भाई। जैसे गांव की अर्थव्यवस्था में खेत खलियान जितने महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारा पशुधन। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर या मुर्गी पालन से ये केवल पशु नहीं बल्कि ग्रामीण परिवार की आमदनी का भी मजबूत जरिया है। लेकिन पशुपालन में भी रोजाना का खर्चा होता है। पशुओं के लिए चारा चाहिए, दवा चाहिए, टीकाकरण चाहिए, बिजली पानी बिजली का खर्च भी, और कई बार पशुओं का बीमा भी कराना पड़ता है। ऐसे में अगर अचानक पैसों की जरूरत अगर निरंका भाई आपको पड़ जाए तो कहाँ से पूरी हो पाएगी?
2: हाँ बिल्कुल, और ये एक सुविधा हमारे किसान भाइयों को है कि वो क्रेडिट कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो बैंक से उनको पैसे मिल जाते हैं और किसी से उनको उधार लेना नहीं पड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि समय सीमा के अंदर आपको पैसे वापस जमा कराने हैं, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे और आपको इस तरह से बैंक की तरफ से सहायता मिलती रहे। और इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो बैंक हैं, बैंक की शाखाओं में जाकर के मिलना पड़ेगा। और वहाँ पर जो कागज़ लिए जाते हैं वो बहुत ऐसे कागज़ नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा जुटाना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड है, आपकी पहचान पत्र है, जो भी कागजात वहाँ पर आपसे लेंगे फिर आपको कार्ड बनाकर दे देंगे। तो ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, ताकि आपको जिस समय पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, किसी से उधार मांगना ना पड़े। तो इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। और अब क्या सुनवा रहे हो
3: जी? अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक
2: उपदेश सुनते हैं राजेंद्र जाटव की आवाज में। तो सुनते हैं ये उपदेश।

0: अश्विनी भाई,
1: जी
0: ये भाई सुन रहे थे उपदेश राजेंद्र जाटव की आवाज में। और अब देखिए, हम भाइयों को ये बहुत जरूरी जो किसानी में एक बात है वो बताना चाहेंगे कि जब भी हम बिजाई करते हैं तो जरूरी है कि हमारा बीज गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। कई ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से हमारी फसलों में जाती है। आपने बिजाई कर दी और जब पौधा उग के आता है उसके अंदर रोग आ जाता है।
1: बिल्कुल
0: फफूंदी वाली कई ऐसी बीमारी हैं जो बीज से ही हमारी फसलों में पहुंचती है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाई जब भी बिजाई करें बीज को उपचारित जरूर करें। जब आप बीज को उपचारित करेंगे उसके बाद उसमें बीमारी आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बीमारी जब होगी तो एक तो गुणवत्ता खराब होगी, आपका उत्पादन भी खराब होगा। तो पहले ही आप उसमें जब उपचार कर देंगे तो संभावना वो खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि उपचारित किस बीज को करना है। खास तौर पर जिस समय आप सरकारी एजेंसी से कोई बीज खरीदते हैं तो आमतौर पर देखने में आता है कि वो पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि उपचारित बीज है, वो उपचार करके भेजते हैं। लेकिन अगर आपने खुद का बीज तैयार किया है तो उसे भी आपको सीधे सीधे इस तरह खेत में नहीं बोना है, बल्कि उसका उपचार जरूर करना है। अब जो आने वाली फसलें, चाहे वो सब्जी की फसलें हैं, चाहे खाद्यान्न की फसलें हैं, चाहे दलहन की फसलें हैं, हर एक में आपको जरूरत होती है कि बीज को उपचारित करें। और इसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं, फफूंदनाशी दवाइयाँ आती हैं, उनके माध्यम से आप फफूंद से आने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारियाँ कई बार तो जब पौधा आप तैयार करते हैं नर्सरी में उसी वक्त भी दिखाई देती हैं।
1: जी
0: अगर बीज आपका स्वस्थ होगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। तो इन बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। जब उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और अब घड़ी की सुइयों से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा। तो अब अपने भाइयों से हम आज्ञा चाहते हैं, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गज़ल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
8: हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हर हफ्ते सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है।
7: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है।
8: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
7: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है।
8: प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बार लाल किले से खेलों के लिए प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आने वाले त्योहारों को लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाएंगे। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट सहित कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों की लागत लगभग 214 करोड़ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।
9: बादली विधानसभा में भी लगभग 160 करोड़ के काम चल रहे हैं। रिठाला में हमारे 328 करोड़ के काम संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं, 609 करोड़ के काम मात्र मुंडका में चल रहे हैं।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
10: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के चुनाव आयोग और देश की चुनावी प्रक्रिया पर आरोपों का खंडन किया है। राजधानी में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मंशा जनता को गुमराह करना और देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोगों का ध्यान देश और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों और विपक्ष की अपनी नाकामियों से हटकर अनावश्यक विवादों की ओर चला जाए।
11: देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। आज वो लोग बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

0: आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था?
1: मुख्यमंत्री ने फॉर्म 6 पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया से संबंधित घोषणा को अलग से जोड़ा गया है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट BLA को चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों BLO के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए। श्री मल्होत्रा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने आज 501 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। महापौर प्रवेश वाही ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने बताया कि इससे पहले निगम ने 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी सनातन संस्कृति के प्रखर संवाहक, हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे।
3: कृषि और किसान कल्याण विभाग रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर विमर्श करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
1: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। इससे पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं के मामले में नीति जारी करने, दावों का निपटारा, निगरानी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सकेगी। पोर्टल पर जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के साथ 11 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इससे पशुपालकों को उनकी अपनी भाषाओं में जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 560 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया। मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस थानों में विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने द्वारका जिला मॉनिटरिंग सेल के साथ मिलकर लगातार काम किया। पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए तकनीकी जांच, फील्ड वेरिफिकेशन और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय किया। वहीं द्वारका जिला पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 2000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने आज कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया।

0: इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें नशा और अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना था। इस प्रतियोगिता में महिला कबड्डी टीम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मनजीत छिल्लर ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। साथ ही प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वॉश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता बद्रा ने महिलाओं 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पदक तालिका में चीन 118 स्वर्ण समेत 204 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो म्हारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्वभर के पर्यटकों की पहली पसंद है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं युवा गजलकार श्री नयन नीरज।
6: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नयन नीरज नायाब आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम गजल गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस गजल गोष्ठी में हम गजल की उस जादुई दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ जज्बात लफ्जों का रूप लेकर संवेदनाओं की गहराई को छूते हैं और हर एक शेर दिल में उतर जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं, श्री विज्ञान व्रत जी, गजल विधा में आपका योगदान अतुल्य है। आपके शेर संवेदना और सोच की गहराई से निकलकर सीधा दिल में उतरते हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान

0: वरिष्ठ गज़लकार की नायाब गज़लों को सुनने के लिए उतना ही उत्सुक मैं हूँ। तो मैं आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और अपने पहले मेहमान साहब का स्वागत करता हूँ, हमारे वरिष्ठ गज़लकार आदरणीय श्री विज्ञान वृद्धि, और उन्हें मैं आवाज़ देता हूँ अहमद फराज जी के एक शेर के साथ कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, क्या सादा लोग हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो मैं स्वागत करता हूँ श्री विज्ञान व्रत जी का।
1: जी तो तीन मतलब सुने पहले आप।
0: स्वागत है।
1: एक जरा सी दुनिया घर की, एक जरा सी दुनिया घर की, लेकिन चीजें दुनिया भर की, बस अपना ही गम देखा है। मतलब आज करता हूँ कि बस अपना ही गम देखा है,

0: और दो चार गजलें मैं अर्ज करता हूँ। मैं खिड़की वो पर्दा है, मतलब देखें कि मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है। और अब के उसने खुद को भी और नज़र से देखा है,
1: क्या बात है,
0: और नज़र से देखा है। और उसने अपना नाम पता, शेर देखें कि उसने अपना नाम पता अक्सर खुद से पूछता है।
1: वाह,
0: और शेर देखें कि अब की बार निशाने को वो दानिश्ता चूका है।
1: क्या बात है,
0: रोज बदल जाता है जो किस दुनिया का नक्शा है।
1: वाह,
0: मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और साहब ये गजल का मतलब देखें कि चुप्पी से बतियाऊं कैसे ये लहजा अपनाऊं कैसे। रहना और कहीं नामुमकिन खुद में भी रह पाऊं कैसे।
1: क्या बात है,
0: जिनका उत्तर केवल तुम हो ऐसे प्रश्न उठाऊं कैसे।
1: वाह वाह सर, बहुत खूबसूरत।
0: और सब कुछ समझे बैठे हो तुम फिर तुमको समझाऊं कैसे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत।
0: सब कुछ समझे बैठे हो तुम फिर तुमको समझाऊं कैसे। और जिसने मुझको दुश्मन समझा मैं उसका हो जाऊं कैसे।
1: वाह,
0: और किसने दर्द दिया है मुझको सबको सच बतलाऊं कैसे। किसने दर्द दिया है मुझको सबको सच बतलाऊं कैसे। और मुझको खुद पर शक होता है पर इल्जाम लगाऊं कैसे।
1: लगाऊं कैसे,
0: चुप्पी से बतियाऊं कैसे ये लहजा
1: अपनाऊं
0: कैसे।
1: कैसे, बहुत खूबसूरत गजल सर।
0: एक गजल और देख लें,
1: जी स्वागत है।
0: मतलब देखें कि मुझको जिस्म बना कर देख एक दिन मुझ में आकर देख।
1: आह,
0: मुझको जिस्म बना कर देख एक दिन मुझ में आकर देख। और ये शेर देखें कि जिसका उत्तर तू खुद है अब वो प्रश्न उठा कर देख। अच्छा अपने खुद को तू खुद में ही दफना कर देख। क्या समझा तू दुनिया को दुनिया को समझा कर देख।
1: आहा,
0: और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि तू अपनी जद में है क्या अपना हाथ बढ़ा कर देख।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गजल।
0: एक मतलब देखें कि लापता था लापता है ये पता तो आपका है।
1: वाह,
0: और एक मतलब और देखें कि मुझसे मिलकर फर्जाने लौटे होकर दीवाने। और ये मतलब अर्ज करता हूँ गजल का, आईना दिखलाना है क्या उसको सब समझाना है क्या। वो जो इतना गुमसुम सा है कोई राज छुपाना है क्या।
1: वाह,
0: और तुम जो इतना खुश दिखते हो उनका आना जाना है क्या।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: तुम जो इतना खुश दिखते हो उनका आना जाना है क्या। और इतनी देर लगी आने में रास्ते में मैखाना है क्या।
1: क्या बात है,
0: इतनी देर लगी आने में रास्ते में मैखाना है क्या। और पैकिंग इतना चमकीला है भीतर माल पुराना है क्या।
1: बहुत बहुत अच्छा।
0: आईना दिखलाना है क्या उसको सब समझाना है क्या।
1: बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे वरिष्ठ शायर श्री विज्ञान वृद्धि। और किसी ने कहा है कि यही नहीं कि जमाने का ढब दिखाई दे, यही नहीं कि जमाने का ढब दिखाई दे और गज़ल वो है कि सब दिखाई दे। उसी तरह से विज्ञान जी ने इतनी खूबसूरत गज़ल हमें सुनाई, बहुत खूबसूरत सर। और इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान शायर आदरणीय श्री अरुण सागर जी का। अरुण सागर जी को मैं आवाज़ लगाता हूँ बशीर बद्र साहब के एक शेर से कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा

0: फासला रखना जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बहुत बहुत स्वागत है अरुण सागर जी आपका।
1: नमस्कार। मैं एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहा हूं।
0: स्वागत है।
1: हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं, और जिन्हें आता है चलने का सलीका, जिन्हें आता है चलने का सलीका, उन्हीं के पांव काटे जा रहे
0: वाह
1: हैं,
0: वाह वाह।
1: जिन्हें आता है चलने का सलीका, उन्हीं के पांव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं। इसी हवाले से एक मतला और चंदाशार सुने
0: स्वागत
1: कि
0: है।
1: तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
0: वाह वाह।
1: तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं, और सजा जिस दौर में दी जा रही हो बेगुनाहों को, सजा जिस दौर में दी जा रही हो बेगुनाहों को, हम ऐसे दौर को ही गर्दिशे हालात कहते
0: वाह
1: हैं,
0: वाह।
1: हम ऐसे दौर को ही गर्दिशे हालात कहते हैं। और इसी हवाले से एक शेर और सुने कि किसी के जख्म आंसू दर्द व गम तकलीफ की खातिर, किसी के जख्म आंसू दर्द व गम तकलीफ की खातिर, जो आंखों में छलक जाए उसे जज्बात कहते हैं, जो आंखों में छलक जाए उसे जज्बात कहते हैं। और इसका आखिरी शेर सुने कि जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जो आंखों से बरस जाए उसे बरसात कहते हैं।
0: वाह।
1: जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जो आंखों से बरस जाए उसे बरसात कहते हैं। तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और आइए इसी हवाले से एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूं कि खामियां जो थी नहीं किरदार में, खामियां जो थी नहीं किरदार में, वो खबर छापी गई अखबार में, खामियां जो थी नहीं किरदार में, वो खबर छापी गई अखबार में, और जुल्म की सारी हदें लांघी गई, जुल्म की सारी हदें लांघी गई, सर झुका फिर भी नहीं दरबार में, जुल्म की सारी हदें लांघी गई, सर झुका फिर भी नहीं दरबार में, और खामियां जो थी नहीं किरदार में, वो खबर छापी गई अखबार में। आइए और कुछ मोहब्बत के चंद मतले और शेर सुन लें, फिर यह गजल तरन्नुम से आपके सामने हाजिर करूंगा। कि देखें कि हदे एहसास बढ़ती जा रही है, हदे एहसास बढ़ती जा रही है, मिलन की आस बढ़ती जा रही है, और तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है। हदे एहसास बढ़ती जा रही है, मिलन की आस बढ़ती जा रही है, तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और इसी हवाले से एक मतला और एक और शेर गौर कीजिए कि गुलो गुलजार मंजर दे रहा हूं, गुलो गुलजार मंजर दे रहा हूं, फरिश्तों का मुकद्दर दे रहा हूं, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूं, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूं, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूं। और हम सब लोग गांव से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं, मैं वहां से एक मतला और एक शेर और कह के फिर एक गजल की ओर बढ़ते हैं मुकम्मल की। न चांदी याद आती है न सोना याद आता है,
0: वाह।
1: न चांदी याद आती है न सोना याद आता है, दिया मिट्टी का खिलौना याद आता है, और हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, पुराने गांव के घर का बिछौना याद आता है।

0: है। हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, पुराने गांव के घर का बिछौना याद आता है, न चांदी याद आती है, न सोना याद आता है, न दिया मिट्टी का खिलौना याद आता है।
1: बहुत खूबसूरत,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और दो तीन अशार एक गजल के और सुन ले, फिर एक तरन्नुम से गजल हाजिर करता हूँ कि गले उसको लगाया जा रहा है, गले उसको लगाया जा रहा है, जिसे कातिल बताया जा रहा है। और सलीका सीख कर जीने का हमसे, सलीका सीख कर जीने का हमसे, हमें जीना सिखाया जा रहा है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: सलीका सीख कर जीने का हमसे, हमें जीना सिखाया जा रहा है। और जरा देखो हमारे कत्ल में ही, जरा देखो हमारे कत्ल में ही हमें मुलजिम बनाया जा रहा है। जरा देखो हमारे कत्ल में ही हमें मुलजिम बनाया जा रहा है। और किसे अपना बनाने का था वादा, किसे अपना बनाने का था वादा, किसे अपना बनाया जा रहा है, किसे अपना बनाया जा रहा है। और हमी से मांग कर माचिस की तीली, हमी से मांग कर माचिस की तीली, हमारा घर जलाया जा रहा है। हमी से मांग कर माचिस की तीली, हमारा घर जलाया जा रहा है। गले उसको लगाया जा रहा है, जिसे कातिल बताया जा रहा है।
1: वाह।
0: और दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, एक गजल तरन्नुम से उसके चंद असार सुन ले आप।
1: स्वागत है।
0: कि दर पे तेरे ठहर गई आंखें,

लौट कर फिर न घर गई आंखें, दर पे तेरे ठहर गई आंखें। शेर देखें।

0: लौट कर फिर न घर गई आंखें। गौर कीजिए, बज्म में सब हसीन हैं फिर भी, बज्म में सब हसीन हैं फिर भी, तुझ पे आकर ठहर गई आंखें,
1: आंखें।
0: तुझ पे आकर ठहर गई आंखें, लौट कर फिर न घर गई आंखें।
1: क्या खूबसूरत है।
0: दीन दुनिया से बेखबर होकर, दीन दुनिया से बेखबर होकर,

लौट कर फिर न घर गई आँखें, तू तो बस छोड़ कर गया मुझको, तू तो

0: जा बिखर गई आंखें, लौट कर फिर न घर गई आंखें।
1: वाह वाह,
0: और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, लौट कर फिर सिर्फ तेरी तलाश में सागर, सिर्फ तेरी तलाश में सागर, जाने किस किस के डर गई आंखें, जाने किस किस
1: किस
0: के
1: के डर
0: डर
1: गई
0: गई आंखें,
1: बहुत
0: लौट
1: खूबसूरत,
0: कर फिर न घर गई आंखें,
1: वाह वाह,
0: दर पे तेरे ठहर गई आंखें। मेरे प्यारे श्रोताओं, आकाशवाणी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, कवि गोष्ठी में, अब तक जो हम सब का संचालन कर रहे थे सारे कवियों का, अब उनकी बारी है। मैं एक मतला और एक शेर से उनको आवाज देता हूँ। हिंदुस्तान के जाने माने कवि और शायर हैं। तेरे जुल्मों सितम से ये निगाहें नम नहीं होंगी, हमारा पर कतरने से उड़ाने कम नहीं होंगी, और बुलंदी पर हमारा हौसला है और हम भी हैं। बुलंदी पर हमारा हौसला है, बुलंदी पर हमारा हौसला है और हम भी हैं। हमारी धड़कने सांसें कभी बेदम नहीं होंगी, हमारी धड़कने सांसें कभी बेदम नहीं होंगी, तेरे जुल्मों सितम से ये निगाहें कम नहीं होंगी। मैं बहुत अदब से आवाज दे रहा हूँ भाई नयन नीरज नायाब जी को, आप सुने, गौर से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक मतला और शेर देखें, और ये गज़ल जो मैं आपको सुनाऊंगा इसमें एक पिता का दर्द है, वो आप महसूस कर पाएंगे कि
0: बहुत खूब,
1: एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है। कि जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूँ मैं, जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूँ मैं, दबी सांस से हर रिश्ता निभाता रहा हूँ मैं।
0: वाह,
1: जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूँ मैं, दबी सांस से हर रिश्ता निभाता रहा हूँ मैं। वो जो कर रहा है अब मेरी इज्जत को तार तार, वो जो अब कर रहा है मेरी इज्जत को तार तार,
0: वाह,
1: उसकी हर बात पे पर्दा गिराता रहा हूँ मैं,
0: खूबसूरत,
1: उसकी हर बात पे पर्दा गिराता रहा हूँ मैं।
0: वाह,
1: और मेरे कांपते हाथों से अब परहेज है उसे, मेरे कांपते हाथों से अब परहेज है उसे, पकड़ के उंगली जिसे चलना सिखाता रहा हूँ मैं,
0: वाह, वाह,
1: पकड़
0: खूबसूरत,
1: के उंगली
0: बहुत खूब,
1: जिसे चलना सिखाता रहा हूँ मैं। और दर्द घुटने का अब नया खर्चा है उसके लिए, दर्द घुटने का अब नया खर्चा है उसके लिए, बिठा के कांधे पर जिसे मेले घुमाता रहा हूँ मैं, बिठा के
0: जी
1: कांधे पर जिसे मेले घुमाता रहा हूँ मैं।
0: बेहतरीन,
1: और बेटा अब माँ को पास रखने को तैयार नहीं, बेटा अब माँ को पास रखने को तैयार नहीं, जिस माँ बेटे के प्यार पर इतराता रहा हूँ मैं, जिस माँ बेटे के प्यार पर
0: सच है,
1: इतराता रहा हूँ मैं।
0: वाह,
1: और आने वाली नस्लों को तुम यूं बर्बाद न करना, ये शेर देखें कि आने वाली नस्लों को तुम यूं बर्बाद न करना, पुरानी नस्लों को जिस तरह से खून पिलाता रहा हूँ मैं, कि पुरानी नस्लों को जिस
0: वाह,
1: तरह से खून पिलाता रहा हूँ मैं। और रुला रहा है मुझे अब खून के आंसू, रुला रहा है मुझे अब खून के आंसू, उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहा हूँ मैं,
0: वाह,
1: कि उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहा हूँ मैं। और वो जो कर रहा है मेरे ना लौटने का इंतज़ार, वो जो अब कर रहा है मेरे ना लौटने का इंतज़ार, उसको हर कदम पर आवाज़ लगाता रहा हूँ मैं, उसको हर कदम पे आवाज़ लगाता रहा हूँ मैं। और छोड़ रहा है चिता में अब जलता हुआ मुझे, छोड़ रहा है चिता में अब जलता हुआ मुझे,

0: बनकर सजर जिसे धूप से बचाता रहा हूं मैं,
1: क्या बात है।
0: बन के सजर जिसे धूप से बचाता रहा हूं मैं। और इसी तौर का एक कुछ अथार और देखें कि इस दर्द को दवा बना लूं क्या,
1: हाँ हाँ हाँ क्या मिश्रा है,
0: इस दर्द को दवा बना लूं क्या, तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं
1: मुस्कुरा
0: क्या,
1: लूं क्या,
0: तुम
1: बहुत
0: कहो तो जरा मुस्कुरा लूं क्या, और मुझे फिर से किस्मत आजमानी है,
1: हाँ
0: मुझे फिर से किस्मत आजमानी है, एक बार फिर से दिल लगा लूं
1: लगा लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: एक बार फिर से दिल लगा लूं क्या, और सांस लेता हूं तो दम सा घुटता है। ये देखें कि सांस लेता हूं तो दम सा घुटता है, दिल में एक खिड़की बना लूं क्या,
1: क्या बात है,
0: दिल
1: क्या बात
0: में
1: है,
0: एक खिड़की बना लूं क्या,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: कटी है हर रात फकत अंधेरे में, कटी है हर रात फकत अंधेरे में, बुझे दिए को खून से जला लूं
1: जला
0: क्या,
1: लूं क्या,
0: बुझे दिए को
1: बहुत
0: खून से जला
1: जला
0: लूं
1: लूं क्या।
0: क्या, और धूप अब मेरे चेहरे तक नहीं आती, धूप अब मेरे चेहरे तक नहीं आती, जुगनुओं से नया आफ्ताब बना लूं
1: बना लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: कि जुगनुओं से नया आफ्ताब बना लूं क्या, और रात के सन्नाटे अब चुभने लगे हैं, रात के सन्नाटे अब चुभने लगे हैं, पुराना कोई गीत गुनगुना लूं
1: गुनगुना लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: पुराना कोई गीत गुनगुना लूं क्या, और हवा से बिखर गया आशियाना मेरा, हवा से बिखर गया आशियाना मेरा, तुम्हारे दिल में नया घर बना लूं
1: बना
0: क्या,
1: लूं क्या।
0: कि तुम्हारे दिल में नया घर बना लूं क्या, और वो अभी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं गया, वो अभी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं गया, जरा जोर से आवाज़ लगा लूं
1: लगा लूं
0: क्या,
1: क्या, मुस्कुरा
0: तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं
1: लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं क्या। और
1: जी बहुत बढ़िया।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक एक कविता है सर, वो देखें,
1: जी
0: ये इस तरह से है, जैसे सर जहाँ हम आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी होगी वहाँ पहुँचने के लिए, तो उसी को है शब्दों के रूप में मैंने संजोया है,
1: जी
0: कि अब वो मेरे लफ्ज़ों को गुनगुनाने लगे,
1: अब वो मेरे
0: अब
1: लफ्जों
0: वो
1: को,
0: मेरे लफ्ज़ों को गुनगुनाने लगे, इस मकाम पे आने में मुझे ज़माने लगे,
1: जमाने लगे।
0: इस मकाम पे आने में मुझे ज़माने लगे, जला हूँ मैं किसी शबे चराग की तरह, जला हूँ मैं किसी शबे चराग की तरह, खुद को रोशनी बनाने में मुझे ज़माने
1: जमाने
0: लगे,
1: लगे।
0: खुद को रोशनी बनाने में मुझे ज़माने लगे, और आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना, आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना, रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे, कि रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे ज़माने लगे, और गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, इस जंगल में घर बनाने में मुझे ज़माने लगे, कि इस जंगल में घर बनाने में मुझे ज़माने लगे, और एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया, रिश्तों में आप देखते हैं कि एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया, ये रिश्ते समझ आने में मुझे ज़माने लगे, और बस धूल की वजह से लाल है ये आँख मेरी, बस धूल की वजह से लाल है ये आँख मेरी, उसे ये बात समझाने में मुझे ज़माने लगे, उसे ये बात समझाने में मुझे ज़माने लगे, और वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, जिन लम्हों को जुटाने में मुझे ज़माने लगे, और
1: वाह
0: ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, कि उसके दिल में घर बनाने में मुझे ज़माने लगे, और एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, भले ही अपनी आंख सुखाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे, और ये शेर देखें कि लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, और ये लहजा बनाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे, मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया, मैं उसी पल उसका हो गया जो

0: मेरा हो गया, मगर ये बात जताने में मुझे
1: जमाना।
0: जमाने लगे, मगर ये बात जताने में मुझे जमाने लगे। और गुजरा हूँ कई बार एक ही रास्ते से मैं, गुजरा हूँ कई बार एक ही रास्ते से मैं, इस मंजिल तक आने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे।
0: लगे। और किसी ने देखे ही नहीं पैरों के छाले मेरे, किसी ने देखे ही नहीं पैरों के छाले मेरे, जख्मों को मरहम बनाने में मुझे जमाने लगे। और आखिरी शेर है, देखें कि
1: जी
0: कई बार चुभा नस्तर मगर खून न निकला, कई बार चुभा नस्तर मगर खून न निकला, खुद को पत्थर बनाने में
1: जमाने लगे,
0: मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे।
0: लगे,
1: बहुत
0: खुद
1: बढ़िया।
0: को पत्थर बनाने में मुझे जमाने लगे। और गूंगों की तरह रहा हर एक बज्म में नीरज, के गूंगों की तरह रहा हर एक बज्म में नीरज, जुबां को आवाज बनाने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे,
0: लगे,
1: जमाने लगे।
0: जुबां को आवाज बनाने में मुझे जमाने लगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गजल गोष्ठी, जिसमें हमारे मेहमान थे आदरणीय विज्ञान व्रत जी और आदरणीय अरुण सागर जी। और मैं आशा करता हूँ सभी श्रोताओं को गज़ल शायरी एक एक शेर पसंद आया होगा, और इसी आशा में कि आपसे फिर से मुलाकात होगी, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं आज तक के लिए। फिर किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप ये कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे युवा गजलकार श्री नयन नीरज। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण लाल मीना।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अभिजीत की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रुतों कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में लीजिए अब सुनिए यस बोस फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के

0: आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढ़ोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ

0: बागमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण। 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ।

0: अर्थ सिंह।
1: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event.

0: सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
0: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
0: Kuch hi dino baad 2 October hai. Pujya Bapu ki jayanti ka din. Bapu ne hame jeevan ke bahut se mantra diye hain. Swachhata bhi unme se ek hai. हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defence Minister Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said as long as a neighbouring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
2: भारत शांति चाहता है।
3: इंडिया वांट्स पीस बट इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सिक्योरिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग बट इफ एनी कंट्री प्रमोट्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया देर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग विद दैट कंट्री। कंट्रीज दैट यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट्स मस्ट बी सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टेररिज्म कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस।
2: एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज।
4: स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड। फॉलोअर्स ऑन एक्स @ AIR News Alerts and on Instagram @ AIR News Alerts.
1: Welcome back to the news at 9. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah flagged off the country's first LNG powered train from Sabarmati Station in Gujarat today, marking railway's shift towards cleaner energy. The train uses a dual fuel system powered by diesel and liquefied natural gas. The initiative is being seen as a step towards greener rail transport and India's net zero carbon goals. Mr. Shah also launched a series of railway development projects worth more than 1500 crore rupees. Addressing the gathering on the occasion, Mr. Shah said, Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years.
5: 2015-16, the railways used diesel worth 293 crore rupees.

0: Wash, the country clinched two silver medals, with Abhay Singh winning silver in the men's singles and Anahat Singh bagging a silver medal in the women's singles event. Tajashin Shankar bagged a bronze medal in the decathlon. Harita Bhadra won the bronze in the women's 200 meters event, and Parul Chaudhary won bronze medal in women's 3000 meters steeplechase event. President and Prime Minister extended wishes to all the medal winners. Currently, India is at the 12th position in medals tally with a total of 37 medals, including 4 gold, 16 silver and 17 bronze medals. India defended the prestigious Nona Gaparina Dashavelli Trophy at the 2026 Chess Olympiad in Samarkand, Uzbekistan today, finishing as the best overall nation after picking up a silver in the open section and a bronze in the women's event. The Indian men's team played out a draw with Hungary and settled for the silver medal on a tiebreak, while the women drew with Georgia to bring home the bronze in the Chess Olympiad that concluded today. This marks the third straight edition where India have won the trophy, having claimed it on the home turf at Chennai in 2022 during the historic double gold campaign at Budapest in 2024 and the latest in Samarkand. In men's cricket, chasing a target of 296 runs set by West Indies, hosts India with 240 for 2 in 37 overs in the first one-day international of the three-match series in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier put into bat, West Indies posted 295 for the loss of 7 wickets in stipulated 50 overs. India had opted to field after winning the toss. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka and Uttarakhand tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over northeastern parts of India. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained the Nona Gaparina Dashavelli Trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के योम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुदमुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खां है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से एलएनजी से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग नेज मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल्स में चांदी के तमगे हासिल किए हैं और डेकेथलॉन खवातीन की स्टेपल चीज नेज 200 मीटर के मुकाबले में कांसे के तमगे जीते हैं। और भारत ने उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंदाश्विली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। उसने ओपन जुमरे में चांदी और खवातीन के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट फजाई हमला और 2025 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। وزیراعظم

0: आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताज़ा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उड़ी में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देखकर हैरान, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से पैदा देरीना दर्द का भारत का एक फैसला कुन जवाब करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फजाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार एक वाज़ह पैगाम दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: जनाब मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलावार बम धमाकों का जिक्र किया, जिनमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और अपने इस तरीके कार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का यह काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दूर दराज और बर्फ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहां बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं।
1: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुदशुमारी की सहूलत से ये अमल आसान हो गया है। लोग अपने और अपने कुनबों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हिंदी और दीगर 16 जबानों में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में सफाई सुथराई के लिए किए गए इकदाम की मिसालें दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्ता अगर उसे धमकी दी जाएगी तो वह अपनी सलामती और दिफाई खुदमुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक़िदा दिफा से मुतअल्लिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपनी दिफाई खुदमुख्तारी की कीमत पर नहीं। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: قومی اتحاد کو قومی سلامتی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کی سلامتی اکیلے مسلح فوجوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر شہری کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ مذہب، ذات پات، زبان، خطے اور دیگر

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच आज हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। दोस्तों, गीत सुनहरे वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं वो गीत जो हमेशा से हमारे दिलों पर राज करते हैं। और आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म महल के गीत के साथ। आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म नवरंग से आवाज़ें दी हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। सी रामचंद्रन का संगीत है और गीतकार हैं भरत व्यास।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मिलन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से, आवाज़ें हैं आशा भोसले की।

0: माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ की महानता मैंने बहुत देर में जानी, माँ आखिरी वक्त में बेटे को माँ से अलग करने का मुझसे माँ बाप हुआ, माँ मुझे माफ कर दो।
1: मैं इस बर्बादी की वजह हूँ, मेरी वजह से तुमने घुल घुल के जान दे दी।

ऐश और आराम के लालच में मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। मैं बड़ा नालायक हूं, मुझे तुम्हारे पांव छूने का भी अधिकार नहीं।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गीत, फिल्म का नाम गाइड। लीजिए सुनते हैं अगला गीत।

गीत लिया गया है फिल्म अनामिका से, आवाज़ें लता मंगेशकर की, संगीत है आर डी बर्मन का।

लीजिए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखे से। आवाज है हेमलता की और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस आखिरी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी तथा साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को दिए जाने वाले 2000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए कल भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। यह दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर के कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन ग्रुप स्टेज में उसे नेपाल से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सरिता, लाई हूं आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत

ईद नॉन स्टॉप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीतों की छड़ी को।

0: मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए

0: समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। नेपाल में 4 दिनों की मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं। भूस्खलन से 14 लोगों की जान गई और 5 लोग लापता हो गए। बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोगों की मौत लगातार बारिश के कारण हुई। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानकी रमन का गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आपने सुना एस आर जानकी रमन का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने को है, अब समाचार होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर देशभक्ति संगीत होगा और 5:30 पर आपको सुनवाएंगे स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग नट भैरव में डॉक्टर दिनकर शर्मा का हारमोनियम वादन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम होगा वंदना, भक्तिमय संगीत का एक खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे इंद्रप्रस्थ पर। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज का विषय होगा भीतर के विघ्नों का नाश। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6:45 पर आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 6:55 पर होगा संस्कृत में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये खास कार्यक्रम आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 5 बजने को है, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने

0: से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वे AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने व्यक्ति से व्यक्ति आम लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड, डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility. Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on the 2nd of October. He said millions of young people have pledged to stay away from

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किस

किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

印度的李广播电台，从印度时间5:15到6:45和16:00到17:30中亚洲播送普通话节目。首先广播频率为15280千赫，晚间广播频率为